पंडित चंद्रशेखर वाजे के स्वर में सुन रहे थे आप मीडियम वेव 254.45 मीटर अर्थात 1179 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून सन 2026। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। श्रोताओं, स्वीकारें हमारा नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोद्योमिर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विश्व की

0: प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेयरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रातः 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम। आइए सबसे पहले सुने भीष्म सिंह चौहान की रचना, जिसमें बातें हैं देश की, देश के नवनिर्माण की।

समूह स्वर में आप सुन रहे थे देशगान। आइए अब सुने राजेंद्र शुक्ला से कबीरदास का भजन।

अब प्रस्तुत है वात्सल्य के चितेरे सूरदास का भक्ति पद। स्वर रघुनाथ त्रिपाठी का।

समूह स्वर में आपने सुनी शिव स्तुति, रचना वीरेंद्र सिंह की। लीजिए अब सुनिए विनोद चटर्जी से श्री भट्ट द्वारा रचित ये भजन।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।
2: अब सुनिए सुगम संगीत की अंतिम प्रस्तुति, कृष्णा काली के स्वर में भक्तिपद सूरदास का।

इस भावपूर्ण भजन के साथ भक्ति संगीत के कार्यक्रम सुप्रभातम का समापन होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः 6:35 हुए हैं। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि संकेत। आज का विषय अजोला की खेती से लाभ।

अजोला के खेती के बारे में बत कहाँ करब, काहे कि अजोला खेती किसानी या पशुपालन दोनों में मनई का फायदा पहुँचावत है। अजोला काई के नाई पानी में ऊपर ऊपर फैले वाला वनस्पति है। अजोला पानी में पनपत है और बहुत तेज बढ़त। अजोला अक्सर धान के साथ खेते में उगावा जाता है, जैसन के नील हरित काई उगाई जाती। धान के नीता एकर उपयोग हरी खाद के रूप में कीन जात है। अजोला से भूमि के उपजाऊपन में खूब बढ़ोतरी होती, जौने से फसल के उत्पादन में बहुत बढ़वार होती। उथले पानी में धान के खेते में पावा जात है। किसान भाइलो, अजोला के ऊपर नील हरित शैवाल होते जौने का एना बिना अजोली कहते हैं। यह अपने वातावरण से नत्रजन खींचा।

0: देत है। अंजोला शैवाल के बढ़ावे के निता जरूरी कार्बन और वातावरण देत है। अंजोला के यह एक दूसरे के निता अद्वितीय सहजैविक संबंध एक अद्भुत पौधा के रूप में बढ़ावत है। अंजोला में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती। किसान भाई करो, अंजोला सस्ता पचनदार और पौष्टिक पूरक पशु आहार आए। यही खवाए से पशुअन के बांझपन दूर हो जात है। फास्फोरस के कमी के कारण अक्सर पशुअन के पिशाब में खून जाय लागत है। अंजोला खवाए से यह कमी दूर हो जाती। अंजोला से पशुअन का कैल्शियम फास्फोरस लोहा मिलत है, जौने से पशुअन के शरीर के निकाह विकास होत है। अंजोला में प्रोटीन आवश्यक अमीनो एसिड और खनिज लवण जैसे कैल्शियम फास्फोरस पोटेशियम आयरन कॉपर मैग्नीशियम आदि खूब मात्रा में पाए जाते हैं। 1 किलो सुखान अंजोला में 400 ग्राम से 600 ग्राम तक प्रोटीन और 100 से 150 ग्राम तक खनिज और 70 से 100 ग्राम तक एमिनो एसिड सक्रिय जैव पदार्थ और पोलियर्स आदि पाए जाते हैं। अंजोला में कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा बहुत कम होती, यहीं से यह खूब पौष्टिक और असरदार आदर्श पशु आहार के काम करत है। एक गैया भैंसी बकरी गाड़र आ मुर्गी जैसे पशुअन का खवाए के मनई निकहा लाभ ले सकत है। किसान भाइलो, आज यह सिद्ध हो चुका है कि जो मनई दुधारू पशुअन का 1.5 किलो से 2 किलो अंजोला रोजी खवावे तब 15 से 20% दूध तो बढ़ी जात है आ साथ है दूध के गुणवत्तों में खूब बढ़ोतरी होती। अंजोला बहुत पचनदार होता है। एका मुर्गी खूब खाती हैं। एका खवाए से मुर्गिन के वजन और अंडा उत्पादन दोनों बढ़ा है। मुर्गी पालन करे वाले एकर खूब उपयोग कर रहे हैं। एका बकरी गाड़र सुअर बतख और खरगोश का घलाए खवाए के उनके पालन से लाभ लीन जा सकते है। किसान भाई करो, अंजोला के उत्पादन करब बहुत सरल होता है। सबसे पहले का करे कि कौनो छायादार जगह में 2 मीटर लंबा 2 मीटर चाकल और 30 सेंटीमीटर गहल गड्ढा खोद ले। फिर का करे कि गड्ढा में ओहिन के बराबर पन्नी लाए के बिछा दे जौने भूमि में पानी न सोखे। हो सके तो प्रकाश के पैरा बैगनी किरण रोके वाली पन्नी के उपयोग करे। वैसा तो सीमेंट के टंकी में अंजोला उगावा जा सकत है आ ओमा पन्नी बिछावे के फिर जरूरत नहीं पड़े। अब का करे कि गड्ढा में पन्नी के ऊपर 10 से 15 किलो माटी फैला दे। एक के बाद 2 किलो गोबर और 30 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट 10 लीटर पानी में घोर के वह गड्ढा में डाल दे। पानी के स्तर जरूर 10 से 12 सेंटीमीटर तक हो चाहिए। अब ओमा आधा किलो से लाई के 1 किलो तक अंजोला कल्चर वह गड्ढा में पानी में डाल दे। इतना जरूर ध्यान रखे के पहल बेर अंजोला कल्चर निकाह जनवाहन से जनबही लेके खरीदे। हो सके तो कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करके खरीदे। एक बाद रोज अपना 1 किलो से लेके 1.5 किलो तक अंजोला बांस के कौनो खिखरी टोपरी हो झुआ हो उसे छान सकी थे। इतना जरूर करे के हर हफ्ता 20 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो गोबर पानी में घोर के वह गड्ढा में डारत रहे। ऐसे अंजोला के बढ़वार निकही होती। पशुअन का खवाबे के पहले साफ पानी से धो जरूर लेके चाहिए। तैयार मेर से अंजोला उपजाए के अपना पंचे खेती किसानी के साथ है साथ पशुपालन में घलाए निकाह लाभ कमा सकी थे।
1: अंजोला की खेती से लाभ, इस विषय पर कृषि संकेत का प्रसारण हो रहा था। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस से पाठ, स्वर श्रीकांत पारगांवकर और रविन्द्र साठे का।

परशुराम और लक्ष्मण के वाक युद्ध से स्थिति बिगड़ती देख श्री राम ने ऋषि की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा याचना की। बालक यदि चपलता भी करते हैं

तो गुरुजन तथा माता पिता के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है। अतः समदर्शी, सुशील, धैर्यवान तथा ज्ञानी मुनि होने के नाते उन्हें इस अबोध दुधमुहे बच्चे को क्षमा कर देना चाहिए। किंतु तभी लक्ष्मण ने मुनि को एक बार फिर छेड़ा। खड़े खड़े मुनिवर के चरण दुख गए होंगे, सो उन्हें क्रोध त्याग कर बैठ जाना चाहिए। यदि टूटा हुआ धनुष उन्हें इतना ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलवाकर उसे जुड़वा देने का उपाय करना चाहिए। स्थिति गंभीर होते देख राजा जनक समेत उपस्थित जन आतंकित और भयभीत हो गए। श्री राम के शीतल

श्री राम ने एक बार फिर उनका क्रोध शांत करने के उद्देश्य से उन्हें सच्चाई से अवगत कराया कि वो नाहक ही उस बालक पर क्रोध कर रहे हैं। वास्तविक दोषी तो स्वयं राम है, और जिस प्रकार भी मुनि का क्रोध समाप्त हो वो सभी उपाय करने को तत्पर हैं। किंतु मुनि का क्रोध दूर भी हो तो कैसे, लक्ष्मण तो अब भी उन्हें टेढ़ी दृष्टि से ही ताक रहे।

श्रीकांत पारगांवकर और रविन्द्र साठे के स्वर में आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब जान लें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज सवेरे इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रातः 7:30 पर, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज रात्रि को 8:00 सरकार के 12 साल के कामकाज पर एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, विरासत। जिले की चिट्ठी का समय होगा प्रातः 10:00। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग प्रसारित किया जाएगा प्रातः 8:30 पर। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: सायं 7:21 पर किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत प्रसारित होगा प्रातः 7:20 पर और प्रातः 9:00। 10:05 पर सुगम संगीत का प्रसारण किया जाएगा। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। प्रातः 6:55 होने वाले हैं, सुनिए संस्कृत भाषा के समाचार। अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
3: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य यात्रावधौ स्वकीय प्रवासस्य चरमे सोपाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः रात्रौ पेरिस नगरं सम्प्राप्तवान्। पेरिस नगरे आगमन समये विश्रांति निलये एकत्रिताः भारतीय समुदायस्य सदस्याः उत्साहपूर्वकं तदीय भव्यं स्वागतं अकुर्वन्। अद्य प्रधानमंत्री प्रमुख विपणीनां मुख्य कार्यकारिभिः सह चर्चां करिष्यति। तदनन्तरं सः यूरोप महाद्वीपस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी मञ्चे विवाटेक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति, तत्र च स्वसंबोधनं प्रदास्यति। सायंकाले असौ एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भारतीय प्रवासिभिः सह संवादं विधास्यति। G7 देशैः वैश्विक स्थिरतायाः सुरक्षा सहयोगस्य अथ सीमापार संघटित अपराध निवारणस्य उद्देश्येन विभिन्नाः प्रमुखाः घोषणाः विहिताः। मुख्य वक्तव्ये नेतृभिः अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये संजातं संधि निश्चयम् अभिनन्दितम्। अन्य घोषणापत्रे G7 देशैः मादक द्रव्यस्य अवैध कार्यं निरोद्धुं संकल्पो विहितः। अस्मिन् अभियाने ब्राजील दक्षिण कोरिया देशौ अपि सहमतिं प्रदर्शितवन्तौ। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे चलायमाने G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वहितकारी सतत आर्थिक विकासः इत्याख्ये मुख्य विषये आयोजितायां महत्वपूर्ण कार्यगोष्ठ्यां भागं भजते। सत्रेऽस्मिन् G7 देशाः सहभागी राष्ट्राणि अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधयः उपस्थिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य मध्यप्रदेशस्य ओडिशायाः च 5-दिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। प्रथमदिवसे सा मध्यप्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीय दिवसे सा ओडिशायाः रायरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीय दिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे कौशल केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति, सहैव रायरंगपुरे जनसभां च संबोधयिष्यति। चतुर्थ दिवसे सा जून मासस्य एक

0: विंशति दिनांके जबलपुरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति। सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा ख्यूनो राष्ट्रीय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्याम खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामिषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य त्रयोदश प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटं अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्य अनुसारं सम्प्रति जगति 66.2 कोटि जनाः तीव्र खाद्य सुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिण सुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिक संकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिंता प्रदर्शिता यत् विंशति द्वाविंशति तः परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्लस्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरहेम नगरे प्रचल्यमाणायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यांकान्तरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देश भर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देश भर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति आज से प्रदेश के 5 दिवसीय प्रवास पर। प्रधानमंत्री आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। महाराणा प्रताप का जीवन वीरता शौर्य पराक्रम का प्रतीक, कहा मुख्यमंत्री ने। और भारत ने पुरुष क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को और महिला T20 क्रिकेट मैच में नीदरलैंड को हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से प्रदेश में 5 दिवसीय दौरा कर रही हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य उनका इंदौर विमानतल पर स्वागत करेंगे। इसके पश्चात वे बैतूल जाएंगी। वहां वे ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम के बाद वे ओंकारेश्वर पहुंचकर मंदिर में दर्शन एवं आरती में सम्मिलित होंगी। 19 जून को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर में कार्यक्रम में शामिल होंगी। 20 जून को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जबलपुर पहुंचेंगी और 21 जून वहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके पश्चात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह में सहभागिता करेंगी। 22 जून को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और इसके बाद वे ग्वालियर पहुंचकर नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को दुनिया के सामने रखेंगे। पेरिस में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से भारत फ्रांस संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। इससे पहले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई विश्व नेताओं से मुलाकात की और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस साल 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय निर्यात को बड़ा लाभ मिलेगा। भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इससे वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जीवन वीरता शौर्य पराक्रम त्याग का प्रतीक है। उनका नाम स्मरण करते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। महाराणा प्रताप ने तमाम कठिनाइयों के बीच भी राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखा। समाज का हर वर्ग, देश की अस्मिता और आत्मसम्मान के लिए महाराणा प्रताप को एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर भोपाल के महाराणा प्रताप नगर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने समाज के प्रतिभाशाली डॉक्टर, युवा खिलाड़ियों और समाज सेवियों को मंच से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा,
2: यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर जब बढ़ने की बात आएगी तो हमारे लिए भौतिक अधोसंरचनाएं जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुओं के लिए, लेकिन गौरवशाली अतीत के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे कामों के सिलसिले में हमने कमिटमेंट किया था कि महाराणा प्रताप जयंती पे छुट्टी होगी तो पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर अपने उस अवकाश को भी निभा रहा है। लेकिन अवकाश के साथ साथ उनके जीवन के सभी पक्षों को आने वाली पीढ़ी को जानने के लिए भी हम पाठ्यक्रम में भी महाराणा प्रताप को जोड़ने वाले हैं, ताकि स्कूल एजुकेशन के माध्यम से उनके जीवन के सभी पक्षों से भविष्य की पीढ़ी को भी सीखने को मिले।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सीएस 2028 के भव्य आयोजन के लिए हजारों करोड़ के विकास कार्य तेजी से पूर्ण किए जा रहे हैं। उज्जैन, इंदौर और आसपास के सभी जिलों में विकास को गति मिल रही है। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन में धार, नागदा और रतलाम को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल उज्जैन जिले के नागदा में बालाजी धाम में श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा व ध्वज पूजा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉ. यादव का श्री बालाजी धाम में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत विशेष रूप से उपस्थित थे। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएन वुमेन द्वारा संचालित सेफ सिटीज एंड सेफ पब्लिक स्पेसेस फॉर वुमेन परियोजना में जबलपुर शहर को शामिल किया गया है। जबलपुर का चयन देश के एकमात्र शहर के रूप में किया गया है। विश्व के चुनिंदा 65 शहरों में संचालित इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत जबलपुर में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक सर्वसाधारण सार्वजनिक वातावरण विकसित करने की दिशा में कार्य योजना तैयार की जाएगी। इस उपलब्धि पर कल मानस भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े अनुभव और सुझाव साझा किए। इन सुझावों के आधार पर शहर के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं, छात्राओं और कामकाजी युवतियों के लिए सार्वजनिक स्थलों को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। वहीं महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में कल रात भारत ने नीदरलैंड को 95 रनों से हरा दिया। लीड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड को 209 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। जवाब में नीदरलैंड की टीम 114 रन पर सिमट गई। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मुकाबले में कल भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा

मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। आज अगले मुकाबले में भारत का सामना जर्मनी से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 19 जून को विकासखंड कोलारस के ग्राम पचावली और 20 जून को जिला मुख्यालय शिवपुरी स्थित मानस भवन में प्राकृतिक खेती कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी आज आगरमालवा स्थित नमो उपवन में वृक्षारोपण करेंगे और साथ ही जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नर्मदापुरम जिले में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर मतदाता सूची को अपडेट करने का काम जारी है। इसके तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं, जबकि मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले नाम हटाने और अन्य त्रुटियों को सुधारने की कार्रवाई की जा रही है। इंदौर जिले के चंद्रावतीगंज में आगामी 20 जून को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उपस्थित रहेंगे। कटनी जिले में आयोजित जनकल्याण शिविरों के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है। शिविर में अब तक 13,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 12,156 का निराकरण किया जा चुका है। श्योपुर जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत छात्रों के लिए संचालित मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में रसोइयों के लिए कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से प्रदेश के 5 दिवसीय प्रवास पर। प्रधानमंत्री आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। महाराणा प्रताप का जीवन वीरता शौर्य पराक्रम का प्रतीक, कहा मुख्यमंत्री ने। और भारत ने पुरुष क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को तो वहीं महिला T20 क्रिकेट मैच में नीदरलैंड को हराया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर होगा। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रीवा केंद्र का प्रसारण। प्रातः 7:20 हुए हैं।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, समय है फिल्म संगीत सुनने का, लेकिन उससे पहले कुछ बातें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। अच्छा स्वास्थ्य सभी प्रकार की सफलताओं की कुंजी है। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन को सही दिशा में केंद्रित करना अधिक सरल और सुगम होता है, जिससे लक्ष्यों की प्राप्ति आसान होती है। आजकल हम जिस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं और जीवन में जितने तरह के तनाव हमें लेने पड़ते हैं, उससे हमारे फेफड़ों और हृदय पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जो बहुत जल्द हमें अन्य व्याधियों के साथ फेफड़ों और हृदय संबंधी गंभीर रोग दे सकता है। इसीलिए जरूरी है कि व्यायाम को हम अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। अब प्रश्न यह है कि कौन सा ऐसा व्यायाम अपनाया जाए जो सभी आयु वर्ग के लिए अपनाना सरल हो, जिसके लिए हमें बहुत अधिक स्थान और संसाधनों की आवश्यकता भी न हो और जिससे अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। तो प्यारे श्रोताओं, प्राणायाम ही वह विधा है जो प्राण वायु का शोधन कर हमारे प्राणों को नया आयाम देता है। इसके लिए हमें बहुत अधिक संसाधनों और स्थान की आवश्यकता भी नहीं होती। विशेष रूप से ये हमारे फेफड़ों और हमारे हृदय के स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान करता है। प्राणायाम हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण बढ़ाता है, रक्त संचार बेहतर करता है, जिससे फेफड़ों और हृदय की कार्यप्रणाली बेहतर होती है और वो मजबूत बनते हैं। श्रोताओं, शोध ये भी बताते हैं कि प्राणायाम का नियमित अभ्यास रक्तचाप और तनाव को कम करके हृदय पर पड़ने वाला दबाव घटाते हैं। प्राणायाम में नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति और उद्गीत प्राणायाम अपने प्रातः दिनचर्या में हमें जरूर शामिल करना चाहिए। हम इन्हें कम समय से शुरू करके 5 से 10 मिनट तक धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं।

श्रोताओं पर इतना ध्यान रखना जरूरी है कि प्राणायाम का वास्तविक लाभ भोर की बेला में ही लिया जा सकता है, जब वातावरण साफ और स्वच्छ होता है और ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है, और हमें इसे हमेशा साफ और खुले स्थान पर करना चाहिए। और श्रोताओं, एक और बहुत ज़रूरी बिंदु ये है कि यदि संभव हो सके तो प्रशिक्षित योग गुरु या योग प्रशिक्षक से प्राणायाम पर मार्गदर्शन लेना भी एक उचित कदम होगा। यानी थोड़ा बहुत तो हम सब जानते हैं, थोड़ा बहुत आजकल हमारी मदद सोशल मीडिया कर देता है, लेकिन श्रोताओं, सही जानकारी हमें कोई प्रशिक्षित व्यक्ति ही दे सकता है, जैसे कि कोई प्रशिक्षित योग गुरु। तो आइए प्राणायाम को हम इस तरह से अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने फेफड़ों और हृदय को मजबूत बनाने की ओर एक कदम बढ़ाएं। और बात कर रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में फिल्म संगीत की, तो सुनिए किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।
2: इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।
1: ऊंचे नीचे रात पे और मंजिल तेरी राह में राहे रुकना जाना।
0: छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं, बस रुकना मत। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
2: नमस्कार मनोज एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग, ग्रेट थिंग्स हैपन टू दोज हु डोंट स्टॉप बिलीविंग, ट्राइंग, लर्निंग एंड बीइंग ग्रेटफुल,
0: जी,
2: व्हिच इज द एसेंस ऑफ आवर लाइफ। So with that, let's begin our program. We are delving into the freshness of the morning today. Well, first we'll begin with the national international news, Metro City update. There is so much that we will cover and unfold today. We'll also discuss the historical information. Today it's 18th of June 2026. So with this beautiful track, we are beginning our program.
0: जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भारतीय समुदाय में उत्साह का माहौल है। प्रवासी भारतीय बड़ी संख्या में उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। पेरिस से हमारे संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेरिस आगमन से पहले यहाँ रह रहे भारतीय मूल के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पिछले 15 वर्षों से फ्रांस में रह रहे रमेश भावसार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि वर्ष 2014 के बाद भारत में हुए बदलावों को देखकर उन्हें गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि फ्रांस के लोगों के बीच भी उनके प्रति सकारात्मक सोच देखने को मिलती है। भावसार जी ने आकाशवाणी से कहा,
4: यहाँ पे 15 साल से ऊपर हो गए और मोदी जी के लिए तो क्या बताएं, शब्द नहीं मिलते उनके व्यक्तित्व को लेकर। 2014 से जो उन्होंने कार्यभार संभाला है और भारत में, तो मैं अभी हाल ही में गया था तो भारत में देखा कि कितने सारे बदलाव आए और देख के बहुत खुशी मिलती है।
3: रमेश भावसार के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में बसे भारतीय समुदाय से जुड़ाव मजबूत किया है, जिससे प्रवासी भारतीय स्वयं को भारत के और अधिक निकट महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग पहले से ही एकत्र होने लगे हैं और सभी उनके आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज सवेरे के लिए महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
5: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
2: India and United Kingdom have announced that the Comprehensive Economic and Trade Agreement will come into force on 15th of July this year. Ministry of Commerce and Industry is informed that the agreement on social security, also referred to as the Double Contribution Convention, will come into effect on the same day. The ministry noted that the period of exemption under Double Contribution Convention has been increased from 3 years to 5 years, marking a major gain for India's temporary workers. Hailing the agreement as a triumph of economic statecraft, Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal stated that the simultaneous enforcement of the Comprehensive Economic and Trade Agreement and the Double Contribution Convention will open up significant new opportunities for India's exports, as India has secured immediate duty-free access on 99% of tariff lines. He said this will allow textiles, leather, marine, engineering and processed food sectors to compete with no disadvantage and supply their world-class products. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will come into force on 15th of July. The Ministry of Commerce and Industry is informed that the agreement on social security will come into effect on the same day. More from our correspondent.
6: The Ministry of Commerce and Industries also noted that the period of exemption under the Double Contribution Convention, DCC, has been increased from 3 years to 5 years, marking a major gain for India's temporary workers. Hailing the government as a triumph of economic statecraft, Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal stated that the simultaneous enforcement of the CETA and the Double Contribution Convention will open up significant new opportunities for India's exports, as India has secured immediate duty-free access on 99% of tariff lines. He said that this will allow textiles, leather, marine, engineering and processed food sectors to compete with no disadvantage and supply their world-class products. The ministry said that the India-UK CETA has been designed as a people-centric agreement that delivers benefits across society. It added that the implementation of the India-UK CETA and DCC from 15th of next month marks a major step in India's journey towards becoming a globally integrated, resilient and competitive economy. It reflects the shared commitment of India and the United Kingdom to deepen their strategic partnership and deliver prosperity for their people. The ministry noted that this historic economic architecture effectively prepares both nations to navigate the complexities of modern international commerce while permanently accelerating India's trajectory toward an inclusive, prosperous and self-reliant Viksit Bharat 2047. Nitika Gupta, Akashvani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has said that the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will significantly boost the bilateral trade and investment between India and the United Kingdom. In a social media post, Mr. Modi said that the agreement will also unlock numerous opportunities for Indian farmers, workers, MSMEs,

0: startups and innovators and contribute meaningfully to the realization of Viksit Bharat 2047.
1: झारखंड से राज्यसभा की दो सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।
0: प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल एम्बार्क ऑन अ 5-डे विजिट टू मध्य प्रदेश एंड ओडिशा बिगिनिंग टुडे। On the first day of her visit, President Murmu will attend a program on the empowerment of tribal society through spiritual awakening at Betul in Madhya Pradesh. Tomorrow, she will participate in the International Sickle Cell Day celebrations at Omkareshwar in Madhya Pradesh. Later, the same day, the President will inaugurate a medical camp organized by AIIMS Bhubaneswar and dedicate a mega integrated rural piped water supply project for mining affected villages under Kusumi block at Rairangpur in Odisha. On 21st of this month, the President will participate in the International Day of Yoga celebrations at Jabalpur in Madhya Pradesh. Later, she will preside over the 36th convocation ceremony of Rani Durgavati University. On the final day of her visit, President Murmu will interact with members of the Saharia tribe, cheetah trackers, tourist guides and Kuno field team at Kuno National Park in Madhya Pradesh.
1: पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। अफगानिस्तान की टीम 232 रन पर आउट हो गई। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और गुरुनूर बराड़ ने 3-3 विकेट लिए जबकि प्रिंस यादव ने 2 विकेट हासिल किए। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा।
0: In the ICC Women's T20 World Cup, India defeated the Netherlands by 95 runs in a Group A match at Headingley in Leeds last night. Batting first, India posted a formidable 209 for 5 in their allotted 20 overs, powered by Smriti Mandhana's 74 and Shefali Verma's 55. In reply, the Netherlands were bowled out for 114 in 17.3 overs. For India, Sri Charani starred with a 4-wicket haul, while Shefali Verma picked up 3 wickets and Nandini Sharma claimed 2. Smriti Mandhana was adjudged player of the match. I have another story. This is hockey. Indian men's team stunned reigning world champions Germany with a 3-1 victory in the FIH Pro League in Rotterdam, the Netherlands, last night. 33-year-old Manpreet Singh became India's most capped hockey player during the match, making his 413th appearance for the country. Now, India will face Germany again today in the second leg of the fixture before taking on the Netherlands on Sunday. And in the following week, India will play Pakistan and England twice to conclude their Pro League campaign. And these were the national and international updates.
1: एक और खबर जी स्पोर्ट्स की। चीन के गुयांग में चल रहे विश्व मुक्केबाजी कप में भारत के निखिल, दीपक और स्नेह ने अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। निखिल ने पुरुष 55 किलोग्राम वर्ग में ब्राजील के केल्वी ट्रिनडाडेड को जबकि दीपक ने 70 किलोग्राम वर्ग में जापान के सेवान ओकाजावा को 5-0 से हराया। महिला 65 किलोग्राम वर्ग में स्नेह ने दक्षिण कोरिया की सियोन सुजिन को 4-1 से मात दी। आज भारत की मीनाक्षी और नाश जामवाल अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। विश्व मुक्केबाजी का समापन रविवार को होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर। दिल्ली में आज से 20 जून तक शहर भर में 39 जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। शिविरों में नागरिकों को केंद्र और दिल्ली सरकार की योजनाओं की जानकारी, सेवाएं तथा सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य शहरवासियों को केंद्र और दिल्ली सरकार की जन योजनाओं से जोड़ना है। श्री सिंह ने दिल्ली वासियों से अपने नजदीकी जन कल्याण शिविर में पहुंचकर उपलब्ध योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। दिल्ली की एक और खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस महीने की 22 तारीख से एक पेड़ मां के नाम दिल्ली

साल वृक्षारोपण अभियान 2026 की शुरुआत की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बताया कि 70 लाख पौधे लगाने के साथ इस पहल का लक्ष्य दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाना, प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को मजबूत करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत दिल्ली सरकार द्वारा

0: हरित दिल्ली के निर्माण में अपना योगदान दें।
1: We'll now, Manoj, we'll now head to Chennai. The first update. The Enforcement Directorate conducted searches at six locations linked to film producer C. Alakappan in Chennai and Madurai in connection with a cheating case involving actor-turned-politician Gautami Thadimala. The investigation was taken over by the ED last year to probe the money angle based on seven FIRs registered by the Tamil Nadu police. Another update. The National School of Drama, along with Indian Oil Corporation Limited and the Ministry of Culture, successfully presented the play Kalam, The Journey. This event was held at Raja's Higher Secondary School in Thanjavur. The performance marked the grand ending of a 30-day National Children's Summer Theatre Workshop. This is the first time that the School of Drama held an event at a school in Chennai. Now we'll head to Mumbai.
0: Ji. केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C ने साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और पीड़ितों को समय पर राहत प्रदान करने के लिए दो नए पोर्टल का शुभारंभ किया है। मुंबई पुलिस के साइबर अपराध के उपायुक्त DCP बजरंग बनसोड़े ने बताया कि शिकायत निवारण तंत्र GRM और धन बहाली मॉड्यूल MRM नामक ये दो पोर्टल पुलिस, बैंकों और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP के बीच सीधा समन्वय स्थापित करेंगे। शिकायत निवारण तंत्र पोर्टल साइबर अपराध जांच के दौरान फ्रीज किए गए, गिरवी रखे गए या जब्त किए गए बैंक खातों से संबंधित शिकायतों का समाधान करेगा और खाताधारकों को ऐसी कार्रवाइयों की समीक्षा करने में सक्षम बनाएगा। धन बहाली मॉड्यूल को साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों को शिकायत दर्ज करने के बाद फ्रीज या बरामद की गई राशि की वापसी प्राप्त करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। DCP बनसोड़े ने साइबर धोखाधड़ी से प्रभावित नागरिकों से आग्रह किया कि वे तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। मुंबई की एक और खबर। महाराष्ट्र खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग और पुलिस के संयुक्त अभियान के बाद मुंबई के वडाला इलाके में चोरी के डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन से लदे दो टैंकर जब्त किए गए जिनकी कीमत लगभग 1,31,00,000 रुपए थी। अधिकारियों ने बताया कि ये छापेमारी मंगलवार को गोपनीय सूचना के आधार पर की गई थी। उन्होंने बताया कि आरोपियों को टैंकरों से ईंधन निकालते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और चोरी का ईंधन कथित तौर पर काला बाजारी के लिए था। आगे की जांच जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
1: Now we'll turn our attention to Bengaluru. The first update from Bengaluru. Karnataka has unveiled an ambitious roadmap to transform the Bengaluru metropolitan region into a global hub for technology, AI, innovation and advanced manufacturing by 2037. So to promote balanced regional development, the government proposes new growth centres within and beyond Bengaluru, integrating industry, housing and commercial activities. The final economic master plan is expected to be submitted to the Chief Minister and Deputy Chief Minister in September 2026. Another update. Gati Shakti Vishwavidyalaya, India's premier university for transportation and logistics, has signed an MOU with CSIR, National Aerospace Laboratories, Bengaluru, to strengthen collaboration in aviation, education, research, innovation and capacity building. The partnership will focus on curriculum development, advanced laboratories, faculty, capacity building programs and joint R&D initiatives in the aviation sector.
0: जी, अब कोलकाता पश्चिम बंगाल की खबर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा का पहला सत्र आज सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। कार्यक्रम के अनुसार 19 जून को शोक प्रस्ताव पेश किया जाएगा जिसके बाद 22 जून को नई सरकार का पहला राज्य बजट प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर 23 जून को 6 घंटे की चर्चा होगी जबकि 24 और 25 जून को बजट पर चर्चा के लिए कुल 10 घंटे आवंटित किए गए हैं। इसके बाद लगातार छुट्टियों और धार्मिक कार्यक्रमों के कारण विधानसभा को जून के अंतिम सप्ताह में अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया जाएगा और सत्र का दूसरा चरण 6 जुलाई से फिर शुरू होगा।
1: Now we'll talk about Hyderabad. Chief Minister A. Revanth Reddy inaugurated the Telangana Public School at Arutla and announced plans to establish similar institutions in every assembly constituency to deliver quality education and sports training. He said the state's future depends on classrooms rather than buildings and that

0: 1,814 students have already enrolled at Varutla, leading to competition for admissions. The Chief Minister noted that the government is strengthening schools based on Education Commission recommendations to benefit 27 lakh students in government schools. He emphasized the importance of sports and skills through Young India Residential Schools and a sports university aimed at producing Olympic gold medalists.
1: और अब महानगरों दिल्ली मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। यहां का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज दोपहर बाद या शाम को बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शगुन से।
0: मनोज, आई एम अगेन बिगिनिंग विद चेन्नई। इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और इवन थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 29 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 39 डिग्रीज। बेंगलुरु इज expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 32 degrees. Hyderabad again expected to have partly cloudy sky and there is possibility of development of thunder lightning there. The minimum temperature will be around 27 degrees and maximum temperature will be around 40 degrees Celsius there in Hyderabad. Manoj.
1: Ji. और अब इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र से पहले कुछ और विशेष दिन के बारे में बात करते हैं। आज गोवा क्रांति दिवस है। ये दिवस 18 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है क्योंकि 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के लोगों को पुर्तगालियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। 18 जून गोवा की आजादी की लड़ाई के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के लोगों को एकजुट होने और पुर्तगाली शासन के खिलाफ लड़ने का संदेश दिया था। 18 जून को हुई इस क्रांति के जोशीले भाषण ने आजादी की लड़ाई को मजबूत किया और आगे बढ़ाया। गोवा की मुक्ति के लिए एक लंबा आंदोलन चला। अंततः 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने यहां आक्रमण कर इस क्षेत्र को पुर्तगाली आधिपत्य से मुक्त करवाया और गोवा को भारत में शामिल कर लिया गया।
0: How great this happened on 18 June. Today it's also International Day for Countering Hate Speech. Well, this day reminds us that hate speech is a human issue. So creating safe and inclusive spaces from community meetings to online chat groups, this means making sure the voices that are usually ignored, they are heard and they are included. Today's day also marks the Sustainable Gastronomy Day. Gastronomy is sometimes called the art of food. It can refer to a style of cooking from a particular region as well. In other words, gastronomy refers to local food, the local cuisine. So the UN General Assembly adopted its resolution in December 2016 and designated 18th of June as International Observance Sustainable Gastronomy Day. And there are different ways for us, you know, to preserve ecosystems and culinary traditions. This is one of them. This acknowledges gastronomy as a cultural expression related to the natural and cultural diversity of the world.
1: जी, और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 18 जून है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 1979 में आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत राष्ट्रपति ब्रेजनेव द्वारा साल्ट द्वितीय समझौते पर वियना में हस्ताक्षर किए गए।
0: We are taking you back in time. In 1815, Manoj, at Waterloo in Belgium, Napoleon Bonaparte suffered defeat at the hands of the Duke of Wellington, bringing an end to the Napoleonic era of European history. In 1934, United States President Franklin D. Roosevelt signed the Indian Reorganization Act into a law. In 1946, Manoj told us the Goa Liberation Movement's final and organized phase began with Dr. Ram Manohar Lohia's public address in Madgaon against the Portuguese colonial rule. In 1983, Dr. Sally K. Ride, mission specialist, became the first American woman to travel into space. She was part of the space shuttle Challenger launched into space on its second mission, Manoj.
1: 1999 में आज ही के दिन 35 यूरोपीय देशों के बीच लंदन में पेयजल समझौते पर हस्ताक्षर हुए और लातविया में वाइके फ्रिब्रेमा को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया. 2008 में आज ही के दिन केंद्र सरकार ने गुर्जरों को ओबीसी कोटे में 5% आरक्षण देने की घोषणा की. 2008 में आज ही के दिन भारत यात्रा पर आए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच 3 समझौते पर हस्ताक्षर हुए. 2008 में आज ही के दिन फार्मा कंपनी रेनबैक्सी ने अमरीकी फार्मा कंपनी फाइजर के साथ पेटेंट विवाद को एक समझौते के तहत समाप्त किया. और अब समय है इतिहास याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है.
0: वेल, फर्स्ट वी विल टेल यू अबाउट अ म्यूजिशियन पीटर एलन. Well, the singer-songwriter, musician and entertainer known for his flamboyant stage persona, energetic performances and lavish costumes. Well, the song which we have chosen for you to listen to, listeners, this is Glittering Zero. Let's listen in.

0: आज पुण्यतिथि है मिल्खा सिंह की। उनका जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा पंजाब अविभाजित भारत में हुआ था। वे देश के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों में एक जाना पहचाना नाम है। सन 1956 में मेलबर्न में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों में उन्होंने पहली बार 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में भाग लिया था। मिल्खा सिंह ने 1958 में कटक में आयोजित नेशनल गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर स्पर्धा में रिकॉर्ड बनाए। इसके बाद उसी साल टोक्यो में आयोजित हुए एशियन गेम्स में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साल 1958 में ही इंग्लैंड के कार्डिफ में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए 400 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उस समय आजाद भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले वे पहले भारतीय थे। पद्मश्री से सम्मानित मिल्खा सिंह का गौरवपूर्ण खेल जीवन सदैव युवा खिलाड़ियों को अधिक से अधिक शानदार प्रदर्शन के लिए प्रेरणा देता है। उन्हें लोग फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं।
1: मैंने 1952 में दौड़ना शुरू किया। 70,000 किलोमीटर के करीब मैं दौड़ा होऊंगा, जो कि एक रिकॉर्ड है। जो आदमी कंपटीशन लड़ता है और जब तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वो स्पोर्ट्समैन नहीं बन जाता, मैं समझता हूं कि उसे प्रैक्टिस जो है पूरे साल ही करनी चाहिए। कोई भी दिन जो है प्रैक्टिस जो है वो बंद नहीं करनी चाहिए।
2: आज तुम जैसे दौड़े हो, ऐसा दौड़ते हमने किसी इंसान को कभी पहले नहीं देखा। बेटा, तू दौड़ा नहीं, उड़ा है। आज से दुनिया तुम्हें एक सिख नहीं बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानेगी।
3: Well, Milkha Singh, pioneering icon of Indian athletics, whose journey from surviving the partition to becoming the first Indian male to win Commonwealth gold, dominating the 1958 Asian Games, setting a long-standing Olympic record in 1960s. Well, he dominated Indian track and field for over a decade with his speed, spirit and creating multiple records and winning numerous medals as well in his career. Well, such a great, it was there that he sharpened his running skills. Milkha Singh was introduced to the sport only after he had fled to India post the partition and joined the Indian Army then. After he finished sixth in the cross-country race that had around 400 more soldiers running, he was handpicked for further training and this laid the foundation for what would be an impressive career.
0: Jee. आज जन्मदिन है अरविंद स्वामी का। उनका जन्म 18 जून 1970 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ है। वे एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और उद्यमी हैं, जो तमिल सिनेमा और कुछ हिंदी, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मणि रत्नम की फिल्म थलपति के साथ शुरुआत की। बाद में उन्होंने रोजा और बॉम्बे जैसी फिल्मों में अभिनय किया।

0: आज पुण्यतिथि है उस्ताद अली अकबर खां की। उनका जन्म 14 अप्रैल 1922 को शिवपुर गांव अविभाजित भारत में हुआ था। वे संगीतकार और सरोद वादक थे। उस्ताद खां पश्चिमी श्रोताओं के समक्ष भारतीय संगीत प्रस्तुत करने में सक्रिय रहे। इनके संगीत की जड़ें भारतीय संगीत की हिंदुस्तानी उत्तरी परंपरा में जमी है। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
1: नमस्कार।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
3: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
4: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
2: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
5: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
2: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय

0: आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
2: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
4: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
5: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
3: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
6: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था, हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
3: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
7: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
8: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
9: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक एक, रिकॉर्ड 10। उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क। केंद्र सरकार ने कहा, टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल। संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती, बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड वीवा टेक समिट इन पेरिस विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल माक्रों। पीएम मोदी टू आल्सो एड्रेस मेंबर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन फ्रेंच कैपिटल। President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the 3-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.
11: India and France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything.
12: So we are very thankful that Modi ji aaye humse mile.
10: In Paris, Prime Minister Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation, ecosystem and technological advancements. Prime Minister Modi is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. We have more from our correspondent.
13: Today, the Prime Minister continues packed itinerary designed to supercharge bilateral trade and innovation partnerships. He will lead the charge by covering a specialized roundtable with top French and European business leaders, focusing on driving strategic investments into India's expanding industrial and tech corridors. The centerpiece of the visit takes place later today at VivaTech, Europe's premier technology and startup conference. Prime Minister Modi and also French President Emmanuel Macron will lead a series of high-level engagements at the summit, culminating in a highly anticipated human race that highlights India's skyrocketing global digital footprint. The intensive diplomatic trip will wind down with a major community outreach initiative. The Prime Minister is slated to attend a massive diaspora reception featuring vibrant cultural performances that celebrate India's heritage. Mahesh Sobre, Akashwani News, Paris, France.
10: The Paris leg of PM Modi's visit is expected to further strengthen India-France relations, particularly in technology, innovation and people-to-people ties. President Draupadi Murmu will embark on a five-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. On the first day of her visit, President Murmu will attend a program on the empowerment of tribal society through spiritual awakening at Betul in Madhya Pradesh. We have more from our correspondent.
14: President will arrive

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि नारायण मल्होत्रा जोशी का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 5 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश से प्रवीण कुमार झा और दमोह से किशन घीवाला। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रण बांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायुसेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित है। ध्यान रखें, बुधवार अवकाश।
3: रहोगे पीछे ही हरदम हमारे,
4: रहोगे पीछे ही हरदम हमारे, करोगे जब तक पीछा हमारा।
0: भारतीय स्वाधीनता इतिहास में ऐसे अनगिनत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जिया, जिन्होंने सेवा को साधना माना तथा राष्ट्र प्रेम को जीवन का सर्वोच्च धर्म। स्वतंत्रता को केवल स्वप्न नहीं माना बल्कि गांव जंगलों में घूम घूम कर उसे जन जन का विश्वास, संघर्ष और संकल्प बना दिया। अपने जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र को समर्पित करने वाले ऐसे ही महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे लक्ष्मण प्रसाद दुबे। वो एक दूरदर्शी शिक्षाविद और समाज सुधारक भी थे। चूंकि उनका पूरा जीवन एक शिक्षक के रूप में बीता और अपने इस कर्तव्य को उन्होंने एक साधना माना, इसलिए वो आम जन में गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मण प्रसाद दुबे का जन्म 9 जून सन 1909 को दुर्ग जिले में हुआ था। ये वो समय था जब देश में राष्ट्रवाद की लहरें खिलौरे ले रही थी। सन 1905 में बंग भंग आंदोलन की आंच से पूरा देश सुलग रहा था। ऐसे वातावरण में लक्ष्मण प्रसाद दुबे का बचपन बीत रहा था। उनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर ही आरंभ हुई और शिक्षा के साथ साथ वो समाज की विषमताओं को भी देख रहे थे। और पराधीनता के प्रभाव से वो अत्यंत आहत हो जाया करते थे। विद्यार्थी जीवन से ही उनके भीतर अध्ययन के साथ साथ सामाजिक सरोकारों के प्रति गहरी रुचि थी। यही कारण है कि वो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि समाज और राष्ट्र की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते रहे। फिर वो समय आया कि जब देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन नई दिशा प्राप्त कर रहा था। स्वदेशी और सत्याग्रह के विचार लोगों को आकर्षित कर रहे थे। लक्ष्मण प्रसाद दुबे भी इस राष्ट्रीय चेतना से अछूते नहीं रहे। उनके मन में देश की स्वतंत्रता और समाज के उत्थान का भाव निरंतर प्रबल होता गया।
4: जमाने भर में दिल रुसवा हुआ है, मोहब्बत में यही अच्छा हुआ है, इसे महबूब का चेहरा दिखाओ, ये लड़का इश्क में अंधा हुआ है।

0: सब तलब को जमीन के साथ ये धोखा हुआ है। सितारे चांद सूरज सब फलक को जमीन के साथ ये धोखा हुआ है। अब वो घर में भी तो हो सकता था अपने,
1: वो घर में भी
0: तो हो सकता था अपने, कचहरी में जो समझौता हुआ।
2: Book a cabin in the woods. That's approved by the local.

0: उसी से इश्क फिर शादी उसी से
1: दिखावा
0: पीछे ही रहोगे पीछे ही हमारे करोगे जब तक पीछे
1: ब्रिटिश प्रजा के

0: प्रोफेसर बलवंत सिंह को मैं आवाज दे रहा हूँ कि तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया बयान सिद्दीकी साहब, साजिया मैम, साई व सद साहब, आपसे इजाजत तलब करते हुए सीधे सीधे कुछ शेर पेश करना चाहता हूँ। अर्ज किया कि किसी का वक्त अगर उसके साथ हो जाए,
2: क्या कहना वाह वाह वाह,
1: किसी का वक्त अगर उसके साथ हो जाए, जो सालों साल न हो रातों रात हो जाए, किसी का वक्त अगर उसके साथ हो जाए,
0: जो सालों साल न हो
1: रातों रात

0: जैसी जगह लगती है। आधी आखिरी किसकी दवा लगती है, इष्ट में चोट ही कुछ ऐसी जगह लगती है। पढ़ने लिखने
1: शिक्षा
0: का जो
1: पूरी
0: होता
1: करने
0: है
1: के बाद वो शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए।
0: लिखने का जो अध्यापन
1: का कार्य तो करते ही थे, इसके साथ ही उन्होंने अनेक युवाओं को राष्ट्र सेवा हेतु प्रेरित किया। भिलाई में शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए उनका संपर्क जिले के वरिष्ठ सत्याग्रही नरसिंह प्रसाद अग्रवाल से हुआ। अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में उन्होंने मद्य निषेध आंदोलन चलाया, स्वदेशी का संकल्प लिया तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं के साथ साथ उन्होंने जॉर्ज पंचम का चित्र भी जलाया। 1930 का दशक भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण समय था, जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। इसी समय लक्ष्मण प्रसाद दुबे सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। वो अब राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। वो जनसंपर्क संगठन निर्माण के साथ ही लोगों के भीतर राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम करने लगे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत शांत सरल और कर्मठ था। वो मानते थे कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं बल्कि समाज में जागृति और आत्मसम्मान का संचार भी है। यही कारण है कि वो शिक्षा पर अत्यधिक बल देते थे। वो विशेष रूप से नारी शिक्षा और नारी स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे। सन 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की, तब इस आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से हुआ। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की, तब इस आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से हुआ। चूंकि यहाँ कोई समुद्र तट नहीं था, इसलिए सविनय अवज्ञा की भावना से जुड़ते हुए ब्रिटिश शासन के अन्य दमनकारी कानूनों को चुनौती दी गई। मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह आंदोलन का प्रमुख रूप बन गया। वन क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, जनजातीय समाज के लोगों और ग्रामीणों पर अंग्रेजों ने जंगलों में चराई, लकड़ी, घास और वन उपज लेने पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। इसलिए सत्याग्रहियों ने इन कानूनों का उल्लंघन करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ का पोड़ी जंगल सत्याग्रह 1930 के जंगल सत्याग्रहों में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। छत्तीसगढ़ में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वन कानूनों के विरोध में किया गया था। धमतरी के पास स्थित बालोद के ग्राम पोड़ी में हुए जंगल सत्याग्रह का आरंभ जुलाई 1930 में हुआ, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने किया। लक्ष्मण प्रसाद दुबे चूंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहे थे, इसलिए जाहिर तौर पर वो इसमें सघन रूप से सक्रिय हुए। सत्याग्रहियों ने आरक्षित वन क्षेत्र में प्रवेश किया, घास और लकड़ी एकत्र की, पशुओं को प्रतिबंधित क्षेत्रों में चराया। इस तरह वन कानूनों का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। पोड़ी सत्याग्रह की पूरी रूपरेखा तथा दस्तावेजी काम अग्रवाल जी ने लक्ष्मण प्रसाद दुबे को सौंप दिया था। सत्याग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को उन्होंने गुप्त रूप से संरक्षित रखा और उसका पूरा लेखा जोखा एक रजिस्टर में दर्ज कर उसे संकलित किया। सत्याग्रह की इन सभाओं में महिलाएं भी आती थीं, जो चरखा लेकर आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती थीं।

देश की स्थिति से अवगत कराते, स्वाधीनता आंदोलन के उद्देश्य को समझाते और राष्ट्रहित में लोगों को संगठित होने का संदेश देते। उनका मानना था कि स्वतंत्रता का संघर्ष केवल नेताओं का नहीं बल्कि जन सामान्य का संघर्ष है। सन 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, तब पूरा देश नई ऊर्जा से भर उठा और एक निर्णायक लड़ाई आरंभ हुई। इस समय भी लक्ष्मण प्रसाद दुबे छत्तीसगढ़ में सक्रिय थे। वो स्वाधीनता आंदोलन और जंगल सत्याग्रह में पूरी तरह से जुटे हुए थे। उनकी गतिविधियों पर अंग्रेजी शासन की नजर रहने लगी, लेकिन नरसिंह प्रसाद अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद भी वो रुके नहीं, वो आंदोलन को हवा देते रहे। परिणाम स्वरूप लक्ष्मण प्रसाद दुबे को गिरफ्तार करने का आदेश जारी हुआ। उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया और भूमिगत हो गए और वन्य क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन की लौ जलाते रहे। सन 1942 से 1947 तक वो दुर्ग, रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय रहे। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद भी वो चुप नहीं बैठे। वो लगातार समाज सेवा के मार्ग पर चलते रहे। उनके लिए स्वाधीनता का अर्थ केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं था, वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां शिक्षा, जागरूकता और मानवीय मूल्यों का विकास हो। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही उन्होंने शिक्षा के महत्व को बहुत गहराई से समझ लिया था। वो अक्सर कहा करते थे कि किसी भी राष्ट्र का वास्तविक विकास शिक्षित और जागरूक नागरिकों के माध्यम से ही संभव है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने किसी भी पद का लालच नहीं किया। आजादी के बाद उनका पूरा ध्यान सामाजिक जागरण और शिक्षा पर ही केंद्रित रहा। लक्ष्मण प्रसाद दुबे ने ग्रामीण अंचलों में शिक्षा के प्रसार और विद्यालयों की स्थापना की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो मात्र एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी नहीं थे, बल्कि वो ग्रामीण शिक्षा जागरण के अग्रदूत भी थे। गुरुजी के रूप में उन्होंने गांव-गांव में शिक्षा की अलख जगाई, अनेक युवाओं को अध्यापन कार्य से जोड़ा और ग्रामीण अंचलों में विद्यालयीन शिक्षा के विस्तार की दिशा में मजबूत नींव रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की आजादी, भारत का उत्थान, भारत की विजय ही उनके जीवन का अनंतिम लक्ष्य था। निस्वार्थ भाव से आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 23 जुलाई सन 1993 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान राष्ट्र सेवी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न उत्तेजना।

मीडियम वेव 254.45 मीटर अर्थात 1179 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सबसे पहले सुनिए कालजयी हिट फिल्म शोले का गीत। इस फिल्म के लिए गीत लिखा गीतकार आनंद बख्शी ने, संगीत और आवाज RD बर्मन यानी राहुल देव बर्मन की। जी हां श्रोताओं, कई बार गीत की तासीर के अनुसार उसे संगीतकारों ने भी आवाज दी और ये गीत सिनेमा और संगीत के इतिहास में अमर हो गए। ऐसा ही एक गीत संगीतकार राहुल देव बर्मन की आवाज में आप सुनने जा रहे हैं।

फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति त्रिदेव फिल्म से, कलमकारी फिर एक बार आनंद बख्शी की। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में इस गीत को गाया अमित कुमार, साधना सरगम और साथियों ने।

आइए फिर एक बार सुनवाते हैं आपको पंचमदा यानी संगीतकार आरडी वर्मन की आवाज शान फिल्म के इस गीत में। साथ दे रहे हैं मोहम्मद रफी।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। हैशटैग वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया गीत सुन रहे थे आप। फिर एक बार आपको सुनवा रहे हैं कल्याण जी आनंद जी की ही बंदिश, बोल हैं प्रकाश मेहरा के।

0: कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। भारत इनोवेट्स 2026। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत इनोवेट्स 2026 नामक एक महत्वपूर्ण

राष्ट्रीय पहल का आयोजन प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम फ्रांस के नीस स्थित पैले द कांग्रे में संभावित रूप से 18 से 20 जून 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति संभावित है। इस पहल का उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत के शोध, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र, किफायती उच्च प्रौद्योगिकी तथा प्रतिभाशाली मानव संसाधन क्षमता का प्रदर्शन करना है। इस आयोजन के लिए आईआईटी बॉम्बे को नोडल संस्थान नामित किया गया है। समर्पित पोर्टल पर प्राप्त 1200 से अधिक आवेदनों में से शीर्ष 100 नव प्रवर्तकों के चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है। अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट bharatinnovates.in से प्राप्त की जा सकती है। फिर से एक बार सुने, अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट bharatinnovates.in से प्राप्त की जा सकती है। सूचना समाप्त हुई।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

संगीत के कार्यक्रम में आपका स्वागत है श्रोताओं। आइए सुनते हैं जुदाई फिल्म का गीत, बोल समीर के धुन नदीम श्रवण की, आवाजें अभिजीत अलका याग्निक और सपना मुखर्जी की।

के और अलीशा के युगल स्वर में प्रस्तुत है समीर का लिखा गीत फिल्म ऐतराज से। संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा 21 जून 2026 को देशभर में योग संगम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना तथा स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। शैक्षणिक संस्थान, स्वायत्त निकाय, सामुदायिक संगठन, योग संस्थान तथा अन्य इच्छुक संस्थाएं अपने स्तर पर योग संगम कार्यक्रम आयोजित कर इस अभियान से जुड़ सकती हैं। कार्यक्रमों के पंजीकरण एवं अन्य आवश्यक जानकारी के लिए योग संगम पोर्टल yoga.ayush.gov.in/yogasangam का अवलोकन किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

0: हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत है। शान, सुनिधि चौहान और साथियों से आप सुनने जा रहे हैं डार्लिंग फिल्म का गीत। गीतकार समीर, संगीतकार प्रीतम।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 254.45 मीटर अर्थात 1179 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रीवा केंद्र का प्रसारण। प्रातः 10 बजने वाले हैं, सुनिए कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे सतना जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सतना जिले की चिट्ठी। आलेख लाल बहादुर तिवारी, वाचन स्वर शरद बाघेला। सतना जिले में भी इन दिनों प्री मानसून गतिविधियों का दौर है। तेज हवा के साथ कहीं कहीं बारिश होने से तापमान में कमी आई है। जिले में अति वर्षा और बाढ़ आपदा स्थिति में आवश्यक सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07672223211 यानी 07672223211 है। कंट्रोल रूम के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कंट्रोल रूम के लिए प्रभारी अधिकारी राहत शाखा और डिप्टी कलेक्टर लक्ष्य राम जांगड़े को बनाया गया है, जिनका नंबर 9993754244 यानी 9993754244 है। सतना जिले में खरीफ फसलों की बोनी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए जिले में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उप संचालक किसान कल्याण कृषि ने बताया कि वर्तमान में सतना और मैहर जिलों में यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसएसपी सहित विभिन्न उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने गत माह स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में सांसद गणेश सिंह उपस्थित रहे। विगत दिनों प्रदेश की पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और मैहर जिले की प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने मैहर जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट भवन के पास 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नवीन जिला पंचायत के भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला पंचायत भवन को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ तैयार किया जाए। प्रदेश की नगरी विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के रेगांव विधानसभा क्षेत्र में 11 से 15 जून तक सघन भ्रमण एवं जनसंवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। रेगांव मंडल के प्रवास के दौरान राज्य मंत्री ने जनसंपर्क, जनसुनवाई और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए क्षेत्रवासियों को 213 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें दी। कार्यक्रम के तहत उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। उन्होंने ग्रामीणों से अधिक वृक्षारोपण करने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। जिले के जवाहर नगर स्थित दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम में स्विमिंग पूल सहित शेष बचे निर्माण कार्यों का शुभारंभ सांसद गणेश सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि ये स्विमिंग पूल युवाओं में तैराकी के प्रति रुचि बढ़ाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सतना और मैहर जिले में 12 से 18 जून तक नगरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में क्षेत्रीय नागरिकों की समस्याओं के निराकरण और विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। सतना जिले में वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी जल संसाधनों में 16 जून से 15 अगस्त तक क्लोज सीजन घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान सभी प्रकार की मछली पकड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सतना जिले में मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को सभी स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। समय समय पर टीकाकरण कराए जा रहे हैं। सतना और मैहर जिले में किसानों के कल्याण के लिए कृषि और संबंधित विभाग के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए 10 दिवसीय कृषि रथ का शुभारंभ किया गया। ये कृषि रथ जिले के प्रत्येक विकास खंड के अंतर्गत निर्धारित सभी ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहा है। सतना जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जल संरक्षण और जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए व्यापक स्तर पर गतिविधियां आयोजित की गई। इसी तारतम्य में शहर के प्रसिद्ध जगत देव तालाब में जिला पंचायत और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तालाब सफाई के लिए संकल्प लेकर सफाई कार्य शुरू किया। सतना जिले के मझगवां विकासखंड अंतर्गत नकेला में क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र मझगवां के संयुक्त तत्वावधान में किसानों को औषधि पौधों की उन्नत खेती, प्रसंस्करण और उपयोग विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। और सतना जिले में 28 से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, जिसमें घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम बच्चों को दवा पिलाएगी। सतना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और मीडियम वेब पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रातः 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत इनोवेट्स 2026 नामक एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल का आयोजन प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम फ्रांस के नीस स्थित पैले द कांग्रे के संभावित रूप से 18 से 20 जून 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति संभावित है। इस पहल का उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत के शोध, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र, किफायती उच्च प्रौद्योगिकी तथा प्रतिभाशाली मानव संसाधन क्षमता का प्रदर्शन करना है। इस आयोजन के लिए आईआईटी बॉम्बे को नोडल संस्थान नामित किया गया है। समर्पित पोर्टल पर प्राप्त 1200 से अधिक आवेदनों में से शीर्ष 100 नवप्रवर्तनों के चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट bharatinnovates.in से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आधिकारिक वेबसाइट एक बार फिर से सुने, bharatinnovates.in। सूचना समाप्त हुई।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

रूप कुमार राठौर और देवकी पंडित से आपने सुना ये कलाम। मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रीवा केंद्र का प्रसारण। सुगम संगीत की अगली प्रस्तुति जगजीत सिंह की आवाज में।

0: कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा 21 जून 2026 को देशभर में योग संगम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना एवं स्वस्थ व सक्रिय जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। शैक्षणिक संस्थान, स्वायत्त निकाय, सामुदायिक संगठन, योग संस्थान तथा अन्य इच्छुक संस्थाएं अपने स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित कर इस अभियान से जुड़ सकती हैं। कार्यक्रमों के पंजीकरण एवं अन्य आवश्यक जानकारी के लिए योग संगम पोर्टल yoga.ayush.gov.in/yogasangam का अवलोकन किया जा सकता है। योगा संगम पोर्टल एक बार फिर से सुन ले, yoga.ayush.gov.in/yogasangam का अवलोकन किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

इस अंतिम प्रस्तुति के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच का ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। हमारे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम किसी खास विषय पर बात करेंगे। वैसे वो विषय हम सभी के लिए बहुत ही खास है। पानी की कमी को हम कैसे रोक सकते हैं? आने वाली स्थिति, बारिश नहीं होने की स्थिति में या बारिश कम होने की स्थिति में पानी का बचाव हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है ये हम सभी जानते हैं। तो आइए आज हम इस विषय पर बात करेंगे और सुनेंगे सुमधुर गीत। तो कीजिए कॉल 2660902 पर और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। हमें इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। हेलो, नमस्ते जी, कौन बोल रही है?
2: जानकी गुप्ता बोल रहे, ग्राम भगवंत नगर से।
1: कौन बोल रहे हैं?
2: जानकी गुप्ता।
1: जानकी गुप्ता बोल रही हैं जी, कहाँ से?
2: ग्राम भगवंत नगर।
1: अच्छा, और जानकी जी, भगवंत नगर ये कहाँ पड़ता है?
2: ये है टीकमगढ़ जिला में है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: तहसील कलेरा।
1: आपने शायद पहली बार कॉल किया है ना?
2: कॉल अभी 3 तारीख को की थी, कॉल 7 तारीख।
1: नहीं मतलब बहुत, मेरी तो शायद आपसे पहली बार बात हो रही है जानकी जी।
2: आप कौन बोल रही
1: हैं? मैं कविता रावत बोल रही हूँ।
2: हाँ, पहली बार हो गया
1: है ना। चलिए, और सुनाइए क्या हाल है आपके?
2: सब बढ़िया है मैम, खाना बना गए।
1: हाँ,
2: साफ कर रहे थे, फोन लगा रहे थे, लग गया।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। और जानकी जी, आपके यहाँ जो पानी है उसकी कोई कमी तो नहीं है? भरपूर मात्रा में मिलता है आपको पानी?
2: एक तो ये नहर विहर आती है सिंचाई के लिए।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, और जो बैसल कुगा उगा भी यहाँ पर।
1: मतलब अच्छी व्यवस्था है जल की,
2: घर में बोर है।
1: चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपसे एक बात पूछनी है कि आप है ना पानी की बर्बादी करने से बच्चों को या रोकती हैं या बहने देती हैं काफी हद तक पानी?
2: अरे मैम, हमारे यहाँ जो हमारा घर है ना,
1: हाँ,
2: हमारे बिल्कुल भी पानी बर्बाद नहीं करते हम लोग।
1: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि है ना कई जगह पर पानी की बहुत समस्या हो रही है। और अभी हम देख रहे हैं कि जून आधा निकल चुका है लेकिन मानसून अभी पूरी तरह से हमारे यहाँ नहीं आया है।
2: हाँ मैम,
1: है ना।
2: तो हम जो हमारे यहाँ पानी है ना, और हमारे नल में थोड़ा कम पानी है, इसलिए हम और किसी के घर से पानी की वो करें व्यवस्था। तो हमारे यहाँ तो देखो पानी बर्बाद हम करते ही नहीं, कभी नहीं करते। पहले नल से लिया तो नहीं करते, अब घर पानी आता तो नहीं करते।
1: बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि है ना यदि हमें भरपूर पानी मिल भी रहा है लेकिन हमें सब लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पानी की बर्बादी रोकना चाहिए। और ये हम सभी कर
2: गाँव में।
1: हाँ हाँ,
2: पानी की तो जाना, पानी की मात्रा है तो बहुत बार करते हम, तो कई बार रोकते हैं, इतना पानी ना फैलाओ
1: तुम। बिल्कुल सही बात है, जहाँ भी आप देखें कि कोई पानी की बर्बादी कर रहा है तो बेझिझक होकर उसको रोकिए। जी चलिए जानकी जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू, धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी। कौन आप बोल रहे हैं?
0: मैं कविता दीदी बोल रही हूँ।
1: अच्छा, तो
0: आप
1: आज
0: कौन बोल रहे
1: अपनी
0: हैं?
1: मैं सपना से रमेश कोटवानी,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: सपना से रमेश कोटवानी।
0: रमेश कोटवानी।
1: हाँ
0: कहाँ से? जी रमेश कोटवानी जी बोलिए।
1: हाँ तो आज कौन से हेलो वो वाला चल रहा?
0: आज हमारा प्रोग्राम है बात आपकी गीत हमारे।
1: जी, तो समाधि फिल्म का गाना सुनना है।
0: बिल्कुल हाँ आपको गीत तो सुनना ही है, लेकिन आज के प्रोग्राम में हमारी पसंद के गीत होते हैं, बातें आपकी होती हैं। और आज
1: अच्छा
0: की जो बात हमने रखी है उसका विषय है कि जल को कैसे संरक्षित करें, कैसे बचाव करें, हम पानी की बर्बादी को कैसे रोकें।
1: अब जल को तो देखिए दीदी, चाहे वो नाली हो चाहे नर्दा हो, सबको रोक के चलना चाहिए। पानी तो हर चीज का काम आता है, चाहे गंदा भी हो वो भी गमलों में काम आ जाएगा,
0: बिल्कुल सही बात है, लेकिन
1: हर
0: यही
1: चीज में काम
0: बातें
1: आता
0: हम हर जन जन तक पहुंचानी है कि कैसे पानी की बर्बादी को रोकें और
1: है। नहीं
0: वेस्टेज
1: नहीं
0: पानी है उसका क्या उपयोग करें।
1: नहीं दीदी, ये तो जरूरी है। नहीं, ये तो आदमी को शुरू से करना चाहिए, नहीं तो ये तो आगे चल के भविष्य में बहुत दिक्कत होगी।
0: बिल्कुल सही बात है, और ये जो आने वाली दिक्कतों को कि हमारे बच्चों को वो दिक्कतें ना हो, यही सोचकर यदि हम सभी थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो
1: नहीं,
0: पानी को
1: जरूर
0: बचा सकते हैं,
1: जरूरी है दीदी, ये तो बहुत
0: है ना?
1: जरूरी है।
0: क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से कितनी मानसून कितना रूठा हुआ है हम सभी से।
1: अभी देखिए इतनी गर्मी इसलिए भी पड़ती है कि
0: गर्मी,
1: पेड़
0: हाँ
1: पौधे,
0: हर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है, टेम्परेचर।
1: सीमेंटिक रोड बन रही,
0: बिल्कुल सही बात है,
1: वो पानी अब बहे तो जाए कहाँ से,
0: बिल्कुल
1: सीमेंट
0: बिल्कुल।
1: है इधर उधर चला जाता है।
0: बिल्कुल, तो जब भी बारिश
1: तो
0: भी हो
1: वही
0: तो
1: बात
0: उसके लिए
1: है।
0: भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कुछ गड्ढे हमारे जहाँ खेत वेत हैं वहां करके रखें कि वो जमीन के अंदर पानी बैठ सके, है
1: औद्योगिक
0: ना?
1: क्षेत्र देखिए इतने खुले हैं, मशीनों पूरी 24 घंटा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रमेश जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। कल 11 बजे अपना प्रोग्राम सुनिएगा, और अभी के लिए आपसे इतनी ही बातचीत।

0: हेलो
1: हेलो, आकाशवाणी।
0: जी, आकाशवाणी मध्य प्रदेश
1: आप अच्छे हैं? आप?
0: जी। हम बहुत अच्छे हैं, आप अपना शुभ नाम बताइए।
1: मेरा नाम सागर सिंह कुशवाहा है।
0: सागर सिंह कुशवाहा,
1: हाँ जी,
0: कहाँ से?
1: बसई नवाब धौलपुर।
0: जबलपुर,
1: बसई नवाब धौलपुर,
0: धौलपुर
1: हाँ जी।
0: जी। और कब कॉल किया था आपने? आज तो हमारी शायद आपसे पहली बार बात हो रही है।
1: हाँ जी,
0: इसके पहले कब कॉल किया आपने आकाशवाणी में?
1: फोन लगता है नहीं है तुम्हारा।
0: लेकिन आज लग गया ना।
1: आज लग गया, बहुत खुशी हुई है।
0: चलिए सागर जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं राजमिस्त्री हूँ।
0: अच्छा। और अब हम जिस विषय पे आज बात कर रहे हैं, वो बात करने में आपको तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप तो सागर हैं और हम बात कर रहे हैं जल की।
1: आओ बोलो, बताइए।
0: तो बताइए, जल को कैसे बचाया जाए, पानी की बर्बादी कैसे रोकी जाए?
1: एक तो ऐसा है, पानी खर्च कम करो। उसकी जहां तक लगे एक बाल्टी फैला देना, आधी बाल्टी कोशिश करो पानी फैलाने की।
0: बिल्कुल सही बात है। मान लो अपने यहाँ खूब नल आता है, खूब पानी आता है, उसके बावजूद हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि बाकी लोगों के पास उतना नहीं पहुंच रहा है।
1: फालतू नल को मन चलाओ, पानी की जरूरत है उतना ही खर्च करो।
0: बिल्कुल सही बात है। यदि हम अपनी गाड़ियों को धोते हैं तो डायरेक्ट पाइप से ना धो के बाल्टी से मग्गे का इस्तेमाल करें तो पानी की कम बर्बादी होगी। और जो
1: होगी साहब,
0: हमारे दाल चावल धोने का पानी है, यदि वो गमलों में डाला जाए तो उससे भी हमारी पानी की काफी बचत होगी। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, यदि हम सभी उसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी को पानी की दिक्कत नहीं होगी।
1: जैसे पहले कुएं पे पानी निकालते,
0: जी
1: एक बाल्टी के काम निकाल लेते, अब हमारा तो उसको पैप चालू कर देंगे, चल रहा है काफी, एक
0: वही,
1: महीने आठ
0: बहुत जगह
1: घंटा।
0: ऐसा देखा है कि पानी की बर्बादी काफी होती है। तो हम तो यही चाहते हैं अपने सभी श्रोताओं के माध्यम से सब लोगों तक यही जागरूकता फैले कि पानी की बर्बादी को रोका जाए,
1: रोका जाए
0: है ना? चलिए सागर जी,
1: रोका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। कुछ और कहना चाहते हैं?
1: अब गाना सुनना है।
0: गाना तो आप बिल्कुल सुनेंगे, हम अपनी पसंद का गाना सुनवाएंगे और कल 11 बजे से आप अपना कार्यक्रम सुन सकते हैं। हमारे बीच हुई बातचीत भी आप सुन सकेंगे, ठीक है?
1: ठीक है जी,
0: चलिए धन्यवाद।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: दीदी, नमस्ते। हम
0: नमस्ते जी।
1: भागचंद साहू जी, राजेंद्र नगर, गंज बासोदा, जिला विदिशा।
0: भारचंद साहू,
1: बिल्कुल दीदी, आपके नियमित श्रोता।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और
1: और
0: क्या
1: सारे
0: हाल है
1: कार्यक्रम
0: आपके?
1: हैं बहुत बढ़िया है दीदी, आप कैसी
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और
1: हैं?
0: बारिश
1: बिल्कुल।
0: वारिश तो अभी गायब सी है।
1: हाँ, गायब तो है फिलहाल में, कल तो पानी गिरा है गंज वासुदेव में।
0: हाँ, यहाँ भोपाल में भी गिरा था, लेकिन बहुत कम। जो कहते हैं ना कि मानसून आ गया है, वो अभी ऐसे हालात दिख नहीं रहे।
1: नहीं, वो अभी 5%।

0: दिख रहा था माहौल,
1: वही।
0: ऐसा नहीं दिख रहा था।
1: तो आज हमारा विषय यही है कि जल की बर्बादी हम कैसे रोकें, क्योंकि डे बाय डे जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं, वक्त बीतता जा रहा है, पानी
0: बिल्कुल
1: की
0: बिल्कुल
1: कमी होती जा रही
0: बिल्कुल दीदी, बहुत बहुत
1: है ना।
0: अच्छा फिर इसने बिल्कुल।
1: तो बताइए ना,
0: हाँ
1: आप कैसे पानी की बर्बादी को रोकते हैं।
0: दीदी, पानी तो ऐसा है, देखो बेफजूल का पानी बिल्कुल नहीं बहाना चाहिए। है क्या है, जैसे पानी आपका है पर्याप्त, आपके पास है
1: जी
0: तो या गड्ढा मड्ढा वगैरह बना लो या कुछ बना लो, उसको रोक के रखें पानी के लिए,
1: बिल्कुल सही
0: ये
1: कह
0: अपने
1: रहे
0: लिए
1: हैं।
0: आगे के चल के अपने लिए काम आए वो पानी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बिल्कुल रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना पानी बगैर कुछ नहीं हो सकता।
1: और आज हमें पानी है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए ये दिक्कतें और बढ़ जाएंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, पेड़ पौधे कट चुके हैं
1: वही।
0: तो उनकी वजह से पानी की मात्रा कम हो रही है, पानी गिर नहीं रहा सही तरीके से।
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल पानी बिल्कुल भी नहीं गिर रहा सही तरीके से, हम
1: तो
0: पेड़ भी कट
1: इसीलिए
0: चुके हैं।
1: हम सभी का कर्तव्य बन जाता है कि कहीं भी यदि पानी की बर्बादी होते देखें तो उसे
0: बिल्कुल
1: रोकें और स्वयं भी बहुत कम से कम मात्रा में पानी को खर्च करें।
0: बिल्कुल। और दीदी एक बात और कहना चाहते हैं हम रेडियो के
1: बताइए।
0: माध्यम से,
1: हाँ जी।
0: कि आजकल जो स्कूल के खुलने वाले हैं बच्चों के, ज्यादातर
1: हाँ
0: हमें देखने में एक आया है कि आजकल बच्चे टच मोबाइल में ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं।
1: वो तो सही बात है।
0: क्या है ये, गलत है ये, माता पिता का फर्ज है कि उन्हें देखें क्या देख रहे हैं, पढ़ाई
1: बिल्कुल
0: कर रहे
1: सही
0: हैं कि
1: बात
0: नहीं कर
1: है।
0: रहे हैं जी, बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, उनकी लाज देखते आए
1: बिल्कुल
0: भाई,
1: बिल्कुल
0: लापरवाही बिल्कुल ना बरतें बच्चों के साथ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हम जो अपने विषय से अब ना हटें, तो पानी की बर्बादी को रोकने का पूरा प्रयास आप सब भी करें।
0: और दीदी हम ये कह रहे हैं कि हमारे पत्र शामिल नहीं हो रहे हैं आजकल
1: अभी
0: आकाशवाणी के
1: आजकल
0: भोपाल में।
1: अभी होगा, आपका पत्र भी शामिल होगा। बहुत सारे लोग रहते हैं तो सबका नंबर आते आते थोड़ा टाइम लगता है।
0: हाँ
1: चलिए,
0: बहुत
1: कॉल करने के
0: ज्यादा
1: लिए धन्यवाद। हमारे अगले श्रोता लाइन में लगे हुए हैं। ठीक
0: बिल्कुल
1: है
0: दीदी
1: भारतचंद्र जी। थैंक
0: बिल्कुल।
1: थैंक यू
0: मैं दीदी
1: थैंक यू वेरी मच।
0: नमस्ते नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं धार धार जिले के से रवि बोल रहा हूँ,
0: रवि
1: रवि वर्मा।
0: रवि वर्मा, धार जिले से। और रवि जी, क्या करते हैं आप?
1: मैडम मैं किसान भी हूँ और हमारे पास में इंडस्ट्रियल एरिया है पिथमपुर,
0: हाँ,
1: वहाँ पर एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पर एक्सावेटर और जेसीबी बनती है।
0: अच्छा हाँ, मैं जानती हूँ पीथमपुर को तो।
1: जी।
0: चलिए, क्या उम्र क्या है आपकी?
1: मैडम मेरी उम्र 40 वर्ष है और मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ, रेडियो का बहुत दीवाना हूँ
0: अरे वाह,
1: और मेरा
0: अपनी
1: पहली बार
0: दीवानगी
1: फोन लगा
0: बिल्कुल
1: है आपके
0: बरकरार
1: रेडियो पे।
0: रखिए। जी।
1: और मैं कहना चाहता हूँ कि जो रेडियो सुनता है ना,
0: हाँ
1: उसकी कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है। जो सुनता है ना, तो
0: हाँ
1: उसकी कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा होती है मैडम,
0: बिल्कुल
1: ये मेरा
0: सही कह
1: मानना
0: रहे
1: है।
0: हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रेडियो से हमें तमाम तरह की ज्ञान प्राप्त होता है।
1: जी मैडम,
0: आज हम जो
1: बिल्कुल।
0: बात कर रहे हैं, जैसे जल की बर्बादी को रोके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमेशा, मतलब हर बार है ना, पानी मानसून हमसे थोड़ा थोड़ा रूठता जा रहा है, क्योंकि
1: जी,
0: पेड़ कटते जा रहे हैं,
1: हाँ, मैं
0: है
1: भोपाल
0: ना?
1: में आता हूँ ना, तो जब झील थोड़ी सी खाली देखता हूँ ना, तो मुझे भी लगता है
0: सच
1: कि
0: बात है। तो हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को, उनके भविष्य के लिए, पानी को संरक्षित रखने के लिए सभी को थोड़े थोड़े
1: हम
0: प्रयास
1: हमारी
0: करने
1: आने
0: होंगे।
1: वाली पीढ़ी को बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं देना चाहते, उनको पर्यावरण अच्छा दे दें, उनको अच्छे पेड़ पौधे दे दें,
0: बिल्कुल,
1: पानी दे दें, तो यही अपने लिए
0: यही
1: यही
0: विरासत है उनके लिए,
1: विरासत है
0: है
1: उनकी।
0: ना? तो बस
1: क्या
0: इसी का
1: हम
0: प्रयास
1: आधुनिकता
0: करना
1: में
0: है।
1: अपनी

0: प्रकृति को अपने हाथ से खोते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे कैसे प्रयास आप करते हैं रवि जी, थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस बात पर।
0: मैडम, मैं तो अपने, मेरे दो बच्चे हैं, उनको हमेशा यही शिक्षा देता हूँ कि अपने को कम से कम गाड़ी चलाना है, कम से कम अपने को जो बिजली की भी बचत करना है घर में। और जहाँ तक हो सके, हम आसपास तो साइकिल का यूज करते हैं, हमारे घर में दो साइकिल भी है और एक इलेक्ट्रिक बाइक भी है, तो हम कोशिश हमारे स्तर से कर रहे हैं मैडम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अपने स्तर पे हर व्यक्ति यदि कोशिश करता रहेगा तो हम सभी अपने मकसद में सफल होंगे, ठीक है ना रवि जी।
0: कहता हूँ कि मैं बताऊँ, भारत को स्वच्छ देखना चाहता हूँ मैडम।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: यहाँ पे भी मैं अगर ये कचरा और ये पॉलिथीन उड़ते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा कुछ अंदर से फील होता है कि अगर मैं कुछ, मेरे पास समय नहीं है अभी कि मैं कुछ करूँ इसमें ज्यादा सोशल वर्क, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अगर आगे हो गया, अगर मैं फ्री हुआ, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे हो गए, बच्चे कमाने लग गए, तो मैं इसी काम में लगने वाला हूँ।
1: बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए रवि जी।
0: जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही
1: है। मुझे भी बहुत खुशी हुई।
0: मेरे बालक का कल बर्थडे, उसका नाम लेना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल लीजिए।
0: और मेरी मिसेज का नाम है नीतू वर्मा
1: जी,
0: और बड़े वाले बालक जो कंप्यूटर साइंस में बेंगलोर में पढ़ रहा है, उसका नाम है राज वर्मा।
1: चलिए, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे आकाशवाणी परिवार।
0: मेरी माता जी का नाम मैडम शकुंतला वर्मा, और बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। धन्यवाद।
0: गीत है मैडम,
1: गीत हमारी पसंद का होगा आज के कार्यक्रम में,
0: दिल दीवाने का डोला दिल।
1: चलिए ठीक, ओके, धन्यवाद
0: धन्यवाद धन्यवाद।
1: हेलो,
2: हेलो,
1: हाँ जी, कौन बोल रहे
2: हैं? नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
2: मैं हीरू, हीरू जी बोल रही, बाग से।
1: कहाँ से?
2: बाग, बाग जिला, धार।
1: धार जिले से कौन बोल रही है?
2: मैं हीरू बोल रही, हीरू पड़ियार।
1: अच्छा हीरू,
2: हाँ।
1: कैसी हैं?
2: हम तो अच्छे, आप कैसे हो?
1: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए।
2: आपकी होती आप? बढ़िया होती,
1: बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हीरू जी, आज हम ये बात करेंगे कि है ना, पानी की बर्बादी को कैसे रोक सकते हैं हम, आप कैसे रोकती हैं
2: पानी की बर्बादी को? ये तो मेरे को इतना नहीं आता है मैम।
1: हाँ?
2: हम तो बर्तन मानते, तो कई साबुन रसोड़े से मान लेते, पानी की बचत करते, ज्यादा पानी ढोलते नहीं है।
1: अच्छा,
2: हाँ, पानी ढोलना पाप है, अपन को पानी पीने को मिल रहा है इतना ही बहुत है मैम।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए,
2: अपन पानी ढोल ढोल करेंगे फिर अपन क्या, कैसे जिएंगे?
1: बिल्कुल सही बात है,
2: हाँ, पानी से तो जी रहे, पानी से कैसे जी रहे?
1: जल ही जीवन है,
2: अभी तो जीवन है। वो मछली कैसे बाहर निकल जा, अंदर रहती समुद्र में तो जीती, बाहर निकल जाती तो मर जाती है वो।
1: बिल्कुल सही बात है, वही हमारा जीवन है, बिन पानी सब सून, यानी पानी के बिना हम सबका जीवन संभव नहीं है।
2: तो रोटी एक चटनी मिले सीखी सही, अपन को पानी होना जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। तो बस ये बात हम सभी को समझना चाहिए कि यदि आज हमारे पास भरपूर पानी है तो कल के लिए हमें उसे बचा के रखना बेहद जरूरी है।
2: मैम, लोग समझते थोड़ी, ढोल ढोल करते इनके तो क्या,
1: वही अब हो सकता है कि अपन जो बात कर रहे हैं वो सबके कानों तक पहुंचे, और जो लोग बर्बादी करते होंगे वो शायद उन्हें थोड़ी बहुत समझ आ जाए। बस यही आकाशवाणी का उद्देश्य होता है कि लोगों में जागरूकता फैलाना, ठीक है जी।
2: जितना बचत करेंगे, जितना अच्छा रहेगा जीवेंगे तो अपन क्या।
1: बिल्कुल, चलिए हीरू जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दूसरे कॉलर्स भी लाइन में हैं तो हम उनसे बात करेंगे। आपसे आज के लिए इतनी ही बात, ठीक है?
2: धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
0: खाते गांव से गोविंद जलोदिया बोल रहा था।
1: खाते गांव से
0: हाँ,
1: गोविंद जी,
0: गोविंद जलोदिया।
1: गोविंद जलोदिया, कैसे हैं आप?
0: बस बढ़िया है। ठंडी पड़ गई थोड़ी, जब पानी वानी गिर गया तो।
1: बहुत ज्यादा तो नहीं गिर रहा, लेकिन हाँ, हल्का सा जैसे गिरता है तो थोड़े से

0: मौसम में ठंडक आ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस उमस हो जाती है।
1: हो जाती है पर वो
0: आज गोविंद जी हम जो बात कर रहे हैं ना आज, हेलो
1: हाँ
0: जी कौन बोल रहे हैं?
1: खाते गांव से बोल रहा था गोविंद जलोदिया।
0: हाँ आपसे बातचीत अधूरी रह गई थी, फोन डिस्क

0: पानी का बर्बादी कैसे रोका जाए।
1: बताइए ना इस विषय पर, आप कैसे
0: तो पानी
1: पानी
0: का
1: क्या
0: है कि पानी तो बहुत ही मतलब अनमोल है चीज है। पानी तो मतलब क्या है, जल स्तर कम होता ही जा रहा है, पानी कम ढोलो। बहुत सारे नल की टोटियां पे लगी नगर पालिका छोड़ देती है ऐसी पटक पटक, और लोग पटक रहे चलते रहता है काम उसका। क्या अपने घर भी यही हाल है, नल चल रहा है तो चल रहा है, बंद हो रहा है तो बंद हो रहा है, कोई देख रेख करते नहीं।
1: तो ये सबको ध्यान देने की जरूरत है।
0: फव्वारे से नहाया करो तो और कम पानी का उपयोग होता है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन है ना पानी को, बर्बादी को तो रोकना है ना हम सभी को, है ना।
0: पानी को रोकना है, कम उपयोग करो जी। बहुत सारे लोग क्या है कि मतलब बहुत ज्यादा ही उपयोग करते हैं उसका। अक्सर हमारे यहाँ खाते गाँव में तो क्या है कि रोड के रोड सुबह जब नहलाते हैं तो यहाँ से वहां तक रोड को नहलाते थे, जब लोगों को मिल नहीं रहा और ये फेंक रहे हैं।
1: अरे ये बहुत गलत बात है, और जहाँ कहीं भी हम ऐसी पानी की बर्बादी होते देखें ना, तो हम उन्हें बिल्कुल बेतकल्लुफी से रोकें, ये हम सभी का फर्ज है।
0: क्योंकि वो हमारे यहाँ क्या है कि पानी की वो नहीं है, नर्मदा जी बांस में ही है।
1: हाँ हाँ
0: तो उससे सप्लाई होता रहता है। तो पानी का कोई वो नहीं है।
1: हाँ तो आप रोकिए, आप बोलिए उनको कि यदि आज हम पानी की बर्बादी करेंगे तो कल पानी की कमी होगी, है ना। ठीक है गोविंद जी, सबके छोटे छोटे प्रयास ना बहुत बड़े संकट से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। ठीक है, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो, हेलो, हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी,
1: हेलो।
0: नमस्ते।
1: हाँ जी
0: हाँ नमस्ते, कौन
1: नमस्ते जी,
0: बोल रही है?
1: मैं कामिनी दसौंधी बोल रही हूँ, ठिकरी से, बड़वानी जिले के ठिकरी गांव से।
0: अच्छा, बड़वानी से। कामनी जी, कैसी हैं आप?
1: बड़वानी जिले के ठिकरी गांव से। आओ।
0: अच्छा, कैसी हैं आप?
1: बढ़िया बढ़िया
0: और क्या काम करती हैं?
1: सर। मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: अच्छा, हाउस वाइफ हैं। तो कामनी जी, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि पानी की बर्बादी को आप कैसे रोकती हैं, या पानी खूब जब कपड़े धोती हैं, बर्तन मांजती हैं।
1: पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए। पानी अमूल्य है, अपने लिए जल ही जीवन है।
0: ये हम सब समझते हैं, लेकिन है ना, रोकते नहीं है।
1: रोकते नहीं है, बस वो जैसे नल बह रहा है तो उसको बंद नहीं करेंगे। बर्तन बर्तन धोएंगे तो नल में धोएंगे, ऐसे नहीं करना। बर्तन में लेके पानी में बर्तन धो तो उससे पानी की बचत
0: बिल्कुल,
1: होगी।
0: बहुत छोटी छोटी बातें हैं। यदि आप टब में पानी लेके फिर बर्तनों को धोंगी तो पानी की बर्बादी रुकेगी। कार अगर आप पाइप से ना धोए, बाल्टी से धोए, तो उससे पानी की बर्बादी रुकेगी,
1: उससे पानी की बर्बादी
0: है ना।
1: रुकेगी।
0: बहुत सारी बातें हैं। हमारी सब्जी, दाल, चावल, ये सब धोने का पानी यदि हम पेड़ों में डालेंगे तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और पानी की बर्बादी बचेगी।
1: पानी की बर्बादी भी नहीं होगी।
0: बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अगर हम सबका ध्यान रखें तो हम
1: जी
0: आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं।
1: दीदी, पहली बार मेरा कान लगा है। मैं बहुत दिन से प्रयास कर रही थी मगर नहीं लगा, लेकिन आज प्रयास सफल हो गया।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कामनी जी, ये प्रयास तब और सफल होगा यदि आप अपने आसपास के लोगों को भी पानी बर्बाद करने से रोक सकें,
1: जी
0: है ना। कहीं भी आप किसी को अगर ऐसा कुछ करते देखें तो उसे बिल्कुल जाकर रोकिए कि ये गलत है, उसे सही तरीका बताइए। या कहीं नल खुला हुआ देखें तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए बिना किसी झिझक के, है ना।
1: पानी
0: तब
1: का भी, और मैं दीदी, मैं तो लाइट का भी हमेशा घर में कहती रहती हूँ, वहां का लाइट जल रहा है, फालतू जल रहा है
0: बिल्कुल
1: वो
0: हर
1: तो।
0: चीज की अगर बचत हम करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छा भविष्य दे सकेंगे, अच्छी विरासत देकर जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, आज के कार्यक्रम में आपसे हमने जो बातचीत की वो आप कल प्रोग्राम में सुन सकेंगी 11 बजे से, और हमें बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करके। धन्यवाद कामनी जी।
1: थैंक यू।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 5 दिवसीय प्रदेश प्रवास के पहले दिन आज बैतूल में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। इसके बाद वे ओंकारेश्वर के लिए रवाना होंगी। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को और प्रगाढ़ करने के प्रयासों के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में प्रमुख फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। उन्होंने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा रही है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पुलिस में उपनिरीक्षक के 10 और आरक्षक के 50 पदों पर सीधी नियुक्ति का अवसर मिलेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल उज्जैन के महिदपुर में विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डोंगला से गुजरने वाला नया फोरलेन महिदपुर शहर के विकास को गति देगा। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और ग्वालियर संभाग के अनेक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। और भारत अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। पहला गीत आप सुनेंगे हेमलता के स्वर में, फिल्म का नाम अखियों के झरोकों से। गीत लिखा रविंद्र जैन ने, संगीतकार रविंद्र जैन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कोटवा बलिया से। श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। अगले श्रोता नेवादा गाजीपुर से हैं, प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय। अगले श्रोता अमरावती महाराष्ट्र से हैं, कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, अजमा, सालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, राउफ, शाहिद। अगले श्रोता अकोला से हैं, रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म मुगले आजम से। इस गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और साथियों ने। गीतकार हैं शकील बदायूं, संगीतकार नौशाद। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है घंटाघर चौक खंडवा से। श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। अगले श्रोता नांदेड़ से हैं गौतम नगर, प्रभाकर जौंधले और आरती जौंधले। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अमर अकबर एंथनी। इस फिल्म से अगला गीत आप सुनेंगे। इस गीत को सुरों से सजाया किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी और

गीतकार लता मंगेशकर ने, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला से। श्रोता है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। अगले श्रोता गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं, हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: आशा भोसले और किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म सीता और गीता से। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीतकार आर डी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। श्रोता हैं ताज अंसारी, गुलाम साबिर और मिराज जहां। अगले श्रोता धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं, रामचंद माखीजा, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार, श्रीमती सविता, स्वाति और पूरा माखीजा परिवार। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।
1: अरे

मीडियम वेव 254.45 मीटर अर्थात 1179 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रीवा केंद्र का प्रसारण।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब

देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए #वंदेमातरम150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
0: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
0: 870-001-4242।

हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 होने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार की 13वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना अपनी बेटी पार्वती के भाग जाने से दुखी भृगु साई नदी में कूदकर आत्महत्या करना चाहता है। यशवंत उसे बचाता है। भृगु हड़ताल को लेकर यूनियन नेताओं पर जमकर बरसता है। रामू बामू कंपनी के पुराने टायर बेचकर बोतल लेकर आते हैं। खाने के लिए मछली का इंतजाम करने के लिए दोनों मिलकर कंपनी के भंडार से जिलेटिन चुराकर साई नदी में विस्फोट करते हैं। विस्फोट में लिचू का लड़का जगन्नाथ मारा जाता है। लेबर इंस्पेक्टर का सहायक राधेश्याम ठाकुर साहब से मिलता है और कमीशन लेकर कंपनी के मजदूरों की हड़ताल से निजात दिलाने का सौदा तय करता है। नारायणी को अस्पताल में सफाई करने का काम मिल जाता है। पुलिस विस्फोट करने के आरोप में रामू बामू को गिरफ्तार कर लेती है और वर्कसाइट पर विस्फोटक का भंडारण करने के कारण कंपनी पर 10,000 रुपए का जुर्माना करती है। मुंशीगंज के कसाइयों द्वारा फेंके हुए सड़े कच्चे मांस को खाकर दलित बस्ती के कई बच्चे मर जाते हैं और बहुत से बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होते हैं। अब आगे

0: नारायणी, अरे सफाई हो गई क्या?
1: जी डॉक्टर साहब।
0: गुड। देखो नारायणी, अभी तुम्हें एक काम और करना है।
1: जी कहिए।
0: देखो वो सामने मरीजों के खून और मवाद से सनी पट्टियां पड़ी हैं, इन्हें साई नदी के किनारे गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना, समझ गई?
1: जी।
0: ये रोज का काम होगा, समझ गई तुम?
1: जी जी समझ गई डॉक्टर साहब।
0: शाबाश।

0: नारायणी तुम ये गड्ढा क्यों खोद रही हो?
1: वो यशवंत बाबू, खून और मवाद भरी पट्टियां दबानी है इसमें।
0: अब कोई बात नहीं, ये तुम फावड़ा मुझे दे दो, गड्ढा मैं खोद देता।
1: नहीं नहीं, आप यूनियन के नेता हैं, साफ कपड़े पहने हुए हैं।
0: अरे तो क्या हुआ, अब लाओ मुझे दो, मैं खोदता हूँ। अरे लाओ दो। नारायणी गड्ढा तो खोद गया, ला कपड़े मुझे दे दे।
1: ये लीजिए।
0: अच्छा बर्खास्त हो जाने के बाद तुम क्या करोगी नारायणी? सच सच बता नारायणी, क्या उस दिन तू ठाकुर साहब के घर अपनी इच्छा से पाप का काम करने गई थी? बोल, जवाब दे।
1: हे भगवान, क्या जवाब दूं मैं इसे? क्या ये मेरी बात का विश्वास करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसे मेरी बात का यकीन होगा। पर सुमति काकी के अलावा और कौन है इस दुनिया में जो दिल खोल कर दिखाने पर मेरी सच्चाई पर विश्वास करे? मैं जानती हूं और ऐसा कोई भी नहीं है।
0: क्या सोचने लगी नारायणी?
1: हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं बाबू।
0: नारायणी, क्या मैं तेरी कोई सहायता कर सकता हूँ?

0: देख, धैर्य रखना रानी, मेरा दिल कहता है कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
1: यशवंत बाबू, मजदूरों की बातें छिप कर सुनी थी, सहायता की जरूरत मुझे नहीं आपको है। हा? आपको और दूसरे यूनियन नेताओं को अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए।
0: ये तुम क्या कह रही हो नारायणी?
1: वो मजदूर तुम लोगों को जिंदा गाड़ देंगे, खून खराबा होगा, वो तुम लोगों के चीथड़े बना डालेंगे। मैं पूछती हूँ, सच सच बताना, क्या तुम लोगों ने सबके साथ विश्वासघात नहीं किया? क्या भूख से मरने वालों की हत्या तुम लोगों ने नहीं की?
0: इतनी कोशिशों के बावजूद इतने लोगों की भलाई हम नहीं कर पा रहे हैं नारायणी। फिर भी कम से कम एक आदमी के लिए कुछ करने की शक्ति हम में जरूर है। बिल में छिपे हुए सांप की तरह शरीर के किस हिस्से में वो शक्ति है, ये ना तो तुझे मालूम है और ना ही मुझे।
1: मैं फिर कहती हूँ यशवंत बाबू, हमें तो हालात के सामने मजबूर होकर मरना ही है, लेकिन लेकिन तुम लोगों को जिंदा रहना है, हड़ताल कराने के लिए जिंदा रहना है, मजदूरों को भूखा मारने के लिए जिंदा रहना है।
0: नारायणी, सुन नारायणी, देख मैं जानता हूं कि तुमने जीवन में बहुत कष्ट सहा है, मैं सब जानता हूं सब, लेकिन क्या तुम इस तरह टूट जाओगी? इतने दिनों से कष्ट सहते हुए हम लोगों ने अपनी हड्डियों को सीमेंट के खंभे जैसा मजबूत नहीं किया है। अरे गांधी बाबा ने कहा था कि अगर उन्हें फिर से जन्म लेना पड़े तो वो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि वो दलितों के घर में जन्म लें। तू रो क्या रही है नारायणी?
1: यशवंत बाबू, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? सरकारी अस्पताल के बरामदे में भी मेरे पति को रहने नहीं देते।
0: क्या?
1: हाँ, यहाँ की बैरक से सब जाने लगेंगे तो मैं इन्हें साथ लेकर चलूंगी। ऊपर से एक दूध पीता बच्चा भी है। हम मर जाएंगे। मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गई हूँ, अच्छी तरह से समझ गई हूँ यशवंत बाबू, हम मर जाएंगे।
0: देखो नारायणी, अब खुद पर भरोसा रखो। भरोसा खो देने वाले और मरे हुए इंसान में कोई फर्क नहीं होता। खुद पर भरोसा रखो।

0: नारायणी नारायणी नारायणी, इधर आ।
1: क्या है लिच्चू?
0: नारायणी, मेरे लिए दो रोटी लाकर दे सकती है? देख देख मेरा पेट कैसे सूख है, नदी का पानी भी कड़वा लगने लगा है। नारायणी,
1: चल मेरे साथ चल। तू यहाँ ऐसे बैठा रहेगा तो क्या तेरा मरा लड़का वापस आ जाएगा? चल, देख यहाँ बैठा बैठा तो तू वैसे ही मर जाएगा।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नारायण, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। मुझे तेरी रोटी नहीं चाहिए नारायण।
1: सिर्फ नहीं करते
0: तू चल यहाँ से।
1: सुन तो,
0: मुझे कहीं नहीं जाना है।
1: मेरी बात तो सुन।
0: मेरे जगत जगन्नाथ, मुझे भी अपने पास बुला ले।
1: रोते नहीं।
2: नारायणी,

0: हो ना, जो यशवंत के साथ यूनियन में रहते हुए भी कंपनी के साहबों की गुलामी करते हो।
1: अब देखो, सब अपने अपने फायदे की सोचते हैं, तो मैं भी सोचता हूँ। क्या गलत करता हूँ?
0: तुम्हें मुझसे क्या चाहिए?
1: ओहो नारायणी, मैंने तुझसे पहले भी कहा था, ठाकुर साहब बीमार हैं और यहाँ पर हड़ताल चल रही है,
0: तो
1: तो ठीक तरह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, और तू साहब के लिए नई तो है नहीं, है ना? देख नारायणी, मुझे साहब ने खुद तुझे ले जाने के लिए भेजा है।
0: पर मैं नहीं जाना चाहती।
1: अरे नारायणी, क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहती है?
0: क्या मतलब?
1: मतलब साफ है नारायणी, साहब ने धमकी दी है कि वो तुझे उस रात वाली घटना को लेकर झूठ मूठ बदनाम कर देंगे। तो तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी। अब सोच ले, क्या करना है तूने, चलना है या नहीं? अच्छा चल चल चल।

0: देख नारायणी साहब थोड़ी देर में आएंगे, तब तक तू यहाँ आराम कर है? मैं अभी आता हूँ, ठीक है? अभी आता हूँ मैं।
1: मैं किस जंजाल में फंस गई हूँ, लगता है आजकल में कयामत आने वाली है। खून की नदियां, साई में तूफान, इस तूफान में सब ध्वस्त हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं, ये ठाकुर साहब भी नहीं, ठाकुर साहब भी नहीं। कौन कौन हंस रहा है?
2: पहचाना नहीं नारायणी?
1: चौधरी साहब आप?
2: यानी पहचान लिया, इतने साल बाद भी पहचान लिया, तुझसे इस तरह यहाँ मुलाकात होगी। नारायणी मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
1: मैंने भी नहीं सोचा था।
2: नारायणी तू आज भी मुझसे प्यार करती है ना?
1: प्यार? और तुमसे? तुम्हारे लिए प्यार सिर्फ एक वासना है, शरीर की आग को ठंडा करने का जरिया भर है।
2: नारायणी तुझे देखकर और तेरी दुर्दशा के बारे में सोचकर मुझे बहुत दुख हुआ। अरे कुछ ये पैसे रख ले, तेरे काम आएंगे। नारायणी
1: साहब इन पैसों के बदले में आपको क्या चाहिए?
2: कुछ नहीं नारायणी, कुछ नहीं, बस तेरे रूप की गंगा में गोता लगाना चाहता हूँ नारायणी।
1: मैंने तो सुना था कि आपकी शादी हो गई थी।
2: हाँ, ठीक सुना था तूने नारायणी।
1: साहब आपकी पत्नी गंगा को पूछती है?
2: गंगा को पूछती है मतलब?
1: हाँ मेरा मतलब है गंगा की पूजा पाठ तो करती है ना?
2: हाँ करती है, पूजा पाठ जरूर करती है। मैंने तेरे बारे में उसे बताया था, उसकी बहुत इच्छा है कि अगर तू कभी मिले तो तेरी देखभाल करूं, तेरी कोई दिक्कत हो तो मैं तेरी मदद करूं नारायणी। हाँ हाँ उसने कहा था मुझे।
1: यही वो आदमी है जो वर्षों पहले मेरी देह को छल्ली करके भाग गया था, मेरा सारा सुख छीन लिया था इसने, मुझे आसमान से नरक में धकेल कर कायरों की तरह मुंह छिपाकर चुपके से निकल भागा था।

0: आज फिर इसकी गंदी नियत मुझ पर लटका रही है। जी तो करता है कि मैं इसका गला दबा दूं, लेकिन अभी तो इस राक्षस के हाथों किसी तरह खुद को बचाना है। मगर कैसे? हाँ, वो सामने फल काटने वाला चाकू पड़ा है। हाँ, यही मेरी असमत की रक्षा कर सकता है।
1: अरे कहाँ गुमसुम हो गई तुम है? बोलना, क्या चाहिए तुझे? धन, दौलत, पैसा, सब कुछ दूंगा, बोलना।

0: ये हड़ताली मजदूरों मजाक ही बना रखा है। बोलो बोलो
1: साथियों, हड़ताली मजदूर जब तब हमसे टकराते रहते हैं, भले ही कंपनी की शर्तों ने हमारे हाथ बांध रखे हो, लेकिन हम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते।
2: हाँ हाँ, हमें आत्मसम्मान से जीना है। हड़ताली मजदूरों का मुकाबला करने के लिए हमें कमर कस लेनी चाहिए।
1: दलित बैरक की पार्वती जब से भागी है, हड़ताली मजदूर आते जाते हमें गाली देते हैं, तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं। हम ये अपमान नहीं सह सकते।
2: हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। अब की बार हड़ताली मजदूरों का जुलूस इस ओर आएगा तो हम उनका मुकाबला करेंगे।
1: हमें पीस वर्करों की यूनियन बना लेनी चाहिए, हड़ताल करने के लिए नहीं, बल्कि हड़तालियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए।
2: हमारे यूनियन का नाम होगा आजाद मजदूर यूनियन। अब की बार

0: दो दिन से नारायणी घर नहीं आई, कहां कहां नहीं ढूंढा उसे मैंने, पर वो कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। अरे उसे उसे इस दूध मुहे बच्चे की भी सुध नहीं रही। भगवान, पता नहीं कहां होगी वो, किस हाल में होगी वो। भगवान,
1: शिवू, शिवू भाई,
0: कौन है, कौन है दरवाजे पर?
1: शिवू, मैं हूं लिचू।
0: लिचू, लिचू, तू इतनी रात को यहां क्या करने आया है?
1: डर मत, मैं रोटी मांगने नहीं आया।
0: तो फिर तू क्यों आया यहां?
1: शिवू भाई, देखने आया हूं कि नारायणी अभी तक आई या नहीं।
0: अरे नहीं आई वो, अभी तक नहीं आई। अरे सब जगह ढूंढ लिया उसे, पुलिस वालों से भी पूछा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। अरे लीचू भाई, समझ में नहीं आता क्या करूं, कहां जाऊं। अरे तू अब दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा या अंदर आएगा?
1: शिवू,
0: अंदर आ।
1: शिवू, बच्चे को गोद में उठा ले और मेरे साथ चल, खुरपी वगैरह कुछ भी साथ ले ले।
0: ये क्या कह रहे तू? अरे क्या तुझे पता है नारायणी कहाँ है?
1: हाँ पता है, और तू मेरे साथ चल, खुरपी जरूर ले ले।
0: मगर मेरे पास खुरपी तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास कुल्हाड़ी है।
1: चलेगी चलेगी शिवू, जल्दी कर, समय कम है, सवेरा होने से पहले पहुंच जाना है हमें।
0: देख शिवू, शिवू वो देख, पलंग पर बैठी नारायणी साहब के पैर दबा रही, वो देख।
1: अरे हाँ,
0: अरे हाँ, चल चल जल्दी से अंदर चल, चल चल, चल, चल, चल, चल आजा।
1: है? कौन कौन है?
2: क्या तुम दोनों यहाँ?
3: हाँ हम दोनों, पति को घर पर अकेला छोड़कर तू यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है। अभी तुझे मजा चखाता हूँ मैं।
2: मैं जानती थी कि तुम दोनों यहाँ जरूर आओगे, मेरा विवेक ही तुम्हें यहाँ तक खींच कर लाया है। लाओ लाओ कुल्हाड़ी मुझे दे दो।
1: नहीं मैं कुल्हाड़ी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा।
2: दे दो या मुझे जबरदस्ती छीनना पड़ेगा।
1: नहीं दूंगा कुल्हाड़ी।
2: दे दो मुझे, दे दो कुल्हाड़ी, दे दो। तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा?

0: हाथ में।
1: नारायणी तू ये क्या कर रही है? नहीं नहीं नहीं नारायणी नहीं, देख देख देख, समझ कर नारायणी,
0: समझ कर, नहीं छोडूंगी, तू मुझे बदनाम करेगा, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। अब देखती हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। अरे भागता कहाँ है, मैं तुझे जिंदा

0: यशवंत, यही नाम है ना तेरा?
1: अब जी।
0: देख यशवंत, हड़ताल खत्म हो चुकी है, तुम्हारे सारे के सारे नेता गिरफ्तार हो चुके हैं।
1: हाँ?
0: 60 मजदूरों को वापस काम पर रख लिया गया है, दलित बैरक के सभी मजदूरों को बर्खास्त कर दिया गया है, राम तुझे भी।
1: क्या?
0: ये ले लिफाफा, इसमें तेरा हिसाब है। जाकर शंभू के दल से मिल जा, अभी शंभू का दल बहुत ज्यादा दूर नहीं पहुंचा होगा। जा।
1: मैं

0: शंभू काका, रुक जाओ शंभू काका, मैं भी आ रहा हूँ।
1: शंभू काका
2: हाँ?
1: वो देखो यशवंत दौड़ा चला रहा है, थोड़ी देर रुक जाते हैं।
2: ठीक है।
0: अरे शंभू काका, शंभू काका, सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया काका। हड़ताल विफल हो गई, यूनियन के सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए।
3: बड़ा भोला है रे यशवंत तू।
0: हाँ?
3: अरे यूनियन के नेताओं को तो शास्त्री जी की सिफारिश पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ताकि विद्रोही मजदूरों से उनकी जान की रक्षा की जा सके। जब शास्त्री जी का इशारा होगा, यूनियन नेता छूट जाएंगे।
0: ये आप क्या कह रहे हो शंभू काका?
1: हाँ, और जानता है यशवंत, तुझे इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि तू हमारा सच्चा हमदर्द है, ईमानदार है। उन लोगों के लिए तेरा मजदूरों के हाथों मर जाना ही अच्छा है।
0: नहीं नहीं भृगु, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है।
3: यही सच है यशवंत, मगर तेरे जैसा सच्चा इंसान इस कड़वी सच्चाई को कैसे समझ सकता है। एक बात और, शास्त्री भी कंपनी के हाथों बिक चुका है।
0: क्या? ओ, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब।
3: चल यशवंत, आ चले।
1: हाँ, चल।
0: लेकिन काका, लीचू कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा।
3: उसने साई नदी में कूद कर अपनी जान दे दी।
0: ओ, और बसुमती काकी?
1: माँ पुलिस की गोली का शिकार हो गई।
0: और नारायणी और उसका पति?
3: शिबू मर गया।
0: क्या?
3: नारायणी उसकी लाश को छोड़कर आने के लिए तैयार नहीं हुई। तू हमारे साथ चल, अगर मजदूरों को पता लग गया कि तू यहाँ है तो वो तुझे जिंदा गाड़ देंगे।
0: नहीं काका, मैं नहीं जाऊंगा।
3: क्या?
0: आज तक आपका ये डिब्बा खाली है ना?
3: ये हमेशा खाली रहेगा यशवंत, कभी नहीं भरेगा ये डिब्बा।
0: ये मेरे हिसाब के रुपए हैं काका, सारे रुपए मैं आपके इस डिब्बे में डाल रहा हूँ। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ फिर हड़ताल होगी, तब ये रुपए बहुत काम आएंगे। तब किसी को भूखा मत मरने देना काका, किसी को भूखा मत मरने देना।
3: एक बात सुन यशवंत।
0: हाँ बोलो काका।
3: उस दिन की घटना से तूने हमेशा नारायणी को चरित्रहीन समझा, लेकिन वो चरित्रहीन नहीं है।
0: ये तुम क्या कह रहे हो काका?
3: मैं ठीक कह रहा हूँ, तू भी हमारे साथ चलता तो कितना अच्छा होता।
1: हाँ चलना यशवंत।
0: नहीं काका नहीं, मुझे वापस जाना होगा, हर हाल में वापस जाना होगा।
3: क्या नारायणी के पास?
0: उसके पास भी जाऊंगा, उसे और उसके बच्चे को मेरी जरूरत है। और काका एक कारण और भी है मेरे वापस जाने का।
3: एक कारण और?
0: हाँ काका एक कारण और।
1: यशवंत, अरे रुक जाओ, रुक जाओ यशवंत, रुको।

0: ओहो, अरे इतनी रात को कौन आ गया भैया?
1: अरे ठहरो भैया, आ रहा हूँ। दरवाजा तोड़ोगे क्या? आ रहा हूँ।
0: यशवंत तुम?
2: हाँ मैं।
0: इस वक्त?
1: चलो जाओ यहाँ से, जाओ। अरे जाओ यहाँ से, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, समझे? जाओ यहाँ से।
2: शास्त्री जी, मैं वो तलवार हूँ जिस पर आज तक जंग लगी हुई थी, लाचारी की जंग, लेकिन हकीकत ने आज इस जंग को उतार दिया है। अब इस तलवार में एक नई चमक पैदा हो गई है, विद्रोह की चमक शास्त्री जी, और आज ये तलवार तेरे अंत का कारण बनेगी शास्त्री।
3: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जंग लगी तलवार की 13वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 5 दिवसीय प्रदेश प्रवास के पहले दिन आज बैतूल में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हुई। इसके बाद भी ओंकारेश्वर के लिए रवाना होंगी। भारत और फ्रांस आर्थिक औद्योगिक सहयोग को प्रगाढ़ करने के प्रयासों के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में प्रमुख फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। उन्होंने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा रही है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पुलिस में उप निरीक्षक के 10 एवं आरक्षक के 50 पदों पर सीधी नियुक्ति का अवसर मिलेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। भोपाल के रविंद्र भवन में आज शाम को रानी दाई नाटक का मंचन किया जाएगा। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर भोपाल के भारत भवन में 19 जून को शाम 7 बजे फ्रांस के संगीत बैंड की प्रस्तुति होगी। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और ग्वालियर संभाग के अनेक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। और भारत अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एक दिवसीय क्रिकेट मैच का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

दिन का एक बजा है, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की है।

आकाशवाणी द्वारा प्रसारित महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं आपकी सखी पूर्णिमा। आप सभी को हमारा नमस्कार। सखियों, अगले कुछ मिनट्स मैं आपके साथ रहूंगी, तो सोचा क्यों ना प्रकृति से जुड़े विषय पर चर्चा करूं। सखियों, जरा कल्पना कीजिए, एक खूबसूरत सी सुबह जब आंखें मलते हुए खिड़की खोले तो ठंडी हवा का स्पर्श मिले, पेड़ों पर बैठे पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे, दूर तक फैली हरियाली आंखों को सुकून दे और वातावरण में ताजगी घुली हो। सखियों, इस अनुभूति को शब्दों में कहना शायद मुश्किल होगा। कहते हैं कि यदि धरती मुस्कुराती है तो उसकी मुस्कान पेड़ों की हरियाली में दिखाई देती है। जब हवा पत्तों को छूकर गुजरती है तो लगता है जैसे प्रकृति कोई मधुर गीत गुनगुना रही है।

लेकिन आज यही प्रकृति हमसे आग्रह कर रही है, मुझे थोड़ा और हरा भरा बना दीजिए। सखियों, प्रकृति में सुंदरता अपने आप नहीं आती, इसके पीछे होते हैं पेड़ पौधे और उन्हें सहेजने वाले लोग। सखियों, हमें धरती की गोद में हरे भरे पौधे लगाने होंगे, जिससे आने वाले कल को ठंडी छांव, शुद्ध हवा और अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित भविष्य बनकर तैयार कर सके। सखियों, ये पेड़ वर्षा बुलाते हैं, बाढ़ को कम करते हैं, पक्षियों जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं। इनकी छांव में ठंडी हवा का एहसास कीजिए, बस आपका मन यही गुनगुनाएगा।

0: करके उसे बड़ा बनाती है, वैसे ही पौधा लगाकर उसे बड़ा करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। घर के आंगन में लगा एक पौधा पूरे घर की शोभा नहीं बढ़ाता है, बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य और खुशहाली का साथी बन जाता है। सखियों, इसी विषय पर और अधिक जानकारी लेने के लिए अब सुनेंगे वार्ता। विषय है पर्यावरण संरक्षण। वार्ताकार है सुश्री रश्मि शर्मा। तो सुनते हैं ये वार्ता।
1: पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। पर्यावरण शब्द परिधन आवरण से मिलकर बना है। पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य है कि हमारे चारों ओर के वातावरण को सुरक्षित रखना। प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को लगातार प्रयास करना होगा। पेड़ लगाना, पानी बचाना, पुनर्चक्रण करना और प्लास्टिक का उपयोग ना करना जैसे सरल कार्य बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करके स्वयं को और सभी जीवित प्राणियों को सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रदूषण को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकतानुसार ही उपयोग करना चाहिए। वन्य जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए। जल, ऊर्जा और प्लास्टिक के सही उपयोग से पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करके भूमि और जल संसाधनों की बचत की जा सकती है। नदियों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जंगलों का संरक्षण करना चाहिए। अगर हम जंगलों का संरक्षण करेंगे तो जीव जंतु सुरक्षित रह सकेंगे। सामूहिक सहयोग और जागरूकता के माध्यम से हम सभी मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। आज जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है। हमारे पर्यावरण में हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी शामिल हैं और इन सभी की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पेड़ों को काटना और नदियों में कचरा फेंकना, अत्यधिक रसायनों का प्रयोग करने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। पर्यावरण के संरक्षण को हमें हमेशा बनाए रखना है। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। बिजली बचाकर, पानी का सही उपयोग करके, पेड़ लगाकर हम सभी पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर हम हमारे चारों ओर देखें तो ईश्वर की बनाई पर्यावरण की इस अद्भुत सुंदरता को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। पर्यावरण में सुंदर फूल मन को मोह लेते हैं, परंतु आज मानव ने विकास की चाह में पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। प्रकृति अर्थात पर्यावरण के द्वारा ही मनुष्य को भोजन प्राप्त होता है। पर्यावरण वह प्राकृतिक परिवेश है जिसमें मानव अपना जीवन व्यतीत करता है। नदी, झरने, सागर, पर्वत, जलवायु के सूक्ष्म तत्व भी पर्यावरण को निर्मित करते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा देने वाले सूर्य देव व संपूर्ण ब्रह्मांड के आकाशीय पिंड भी पर्यावरण में आते हैं। ये सभी तत्व हमारे जीवन के अस्तित्व और विकास के लिए अनिवार्य हैं। हमें पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है। इसके लिए हमें पर्यावरण के लिए को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मनुष्य ने अपने विकास के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन काल से ही विभिन्न वृक्ष जैसे पीपल, तुलसी, बरगद, नीम को महत्व दिया जाता रहा है। पेड़ पर्यावरण का अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए हमें अपने जन्मदिन पर और विशेष कार्यक्रमों पर वृक्षारोपण करना चाहिए। मुख्य वृक्षों में हम जामुन, आम, अमरूद, बरगद आदि वृक्षों को लगा सकते हैं। मैंने देखा है कि आम का पेड़ तो गमले में भी लग जाता है। हम सभी को ऑक्सीजन वृक्षों से ही मिलती है, अतः हमें सभी पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं

की सुरक्षा के लिए वृक्षों को लगाना चाहिए। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखने का कार्य करते हैं। वृक्षारोपण करने से मृदा का अपरदन नहीं हो पाता, क्योंकि वृक्ष की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं और पेड़ों को उनके चिकित्सा गुणों के लिए भी जाना जाता है। जैसे नीम का प्रयोग फोड़े फुंसी आदि के उपचार के लिए किया जाता है, इसी प्रकार तुलसी का प्रयोग सर्दी खांसी से सुरक्षा के लिए किया जाता है। अर्जुन का पेड़ हृदय से संबंधित समस्याओं और ब्लड प्रेशर के उपचार में बहुत उपयोगी है। जो भूमि बंजर है उस पर भी हम सिंचाई की सहायता से वृक्षारोपण कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में वृक्षों का विशेष महत्व है। वृक्षों से हमें फल, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां आदि प्राप्त होती हैं। लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। पेड़ों से बहुत सारी औषधियां तैयार की जाती हैं, जो हमें रोगों के उपचार में मदद करती हैं। पेड़ न केवल शुद्ध हवा प्रदान करते हैं, बल्कि पर्यावरण को सुंदर बनाते हैं। पेड़ों पर पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं। पेड़ तपती धूप में हमें छाया प्रदान करते हैं। पेड़ों की कमी होने से मनुष्य का जीवन संकट में आ जाएगा, इसलिए हम सभी का दायित्व है कि हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वृक्षारोपण करें, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके और हम सभी एक खुशहाल जीवन जी सकें। मनुष्य ने पर्यावरण को कई प्रकारों से क्षति पहुंचाई है। वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण हुआ। लकड़ी, कंडे, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इन्हें जलाने से वायु प्रदूषण हुआ और इन वाहनों में CNG गैस का प्रयोग करके हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। लकड़ी कंडे के स्थान पर हमें प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए, जिससे प्रदूषण कम हो। मनुष्य ने जल को भी प्रदूषित किया है। जल में पूजन सामग्री विसर्जित करने से, उद्योगों का कूड़ा कचरा जल में डालने से, जानवरों को जल में नहलाने से, इन सभी से जल प्रदूषित हो जाता है। हमें जानवरों को नदी जल में नहीं नहलाना चाहिए। हमें मुर्दों को नदी जल में नहीं डालना चाहिए। उद्योगों का कूड़ा कचरा जल में नहीं डालना चाहिए। पूजन सामग्री जल में विसर्जित ना करके गमले में विसर्जित कर सकते हैं, जिससे जल प्रदूषित ना हो। रेडियोधर्मी प्रदूषण भी होता है, जो बड़े बड़े बमों का परीक्षण होता है, परमाणु बमों का परीक्षण होता है, जिसमें वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होता है। हमें परमाणु बमों का परीक्षण कहीं नगर से दूर एकांत जगह में करना चाहिए, जिससे कि यह ध्वनि प्रदूषण ना हो। बड़े बड़े DJ और लाउड स्पीकर तेज ध्वनि में बजते हैं, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इनकी आवाज मध्यम रखनी चाहिए, जिससे ध्वनि प्रदूषण ना हो। उद्योगों में पुरानी मशीनें जो बहुत तेज आवाज करती हैं, इनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। गाड़ी में साइलेंसर ना होने से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। अतः हमें ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक नियंत्रित ध्वनि पर लाउड स्पीकर बजाने चाहिए। उद्योगों में नई आधुनिक मशीनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कम आवाज आए, और गाड़ियों में साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को रोक सकें। इसी प्रकार मृदा अपरदन होता है। अत्यधिक वर्षा होने पर मिट्टी बह जाती है। पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी अपने पैरों से मिट्टी को ढोकर मृदा का अपरदन करते हैं। मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए कतारबद्ध लाइन से पेड़ लगाने चाहिए, ताकि मृदा अपरदन को रोका जा सके, क्योंकि वृक्ष जो हैं वो मिट्टी को बांधे रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें जल, मृदा और वायु का संरक्षण करना होगा। यह सब कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम सभी को मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करने होंगे। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वृक्षारोपण करना होगा, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित हो। जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं, लेकिन हम चाहें तो हम उपयोगी वृक्ष जैसे बरगद, पीपल, आम, जामुन, अमरूद लगा सकते हैं और उन्हें सिंचित कर सकते हैं, ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं। हम सभी हर कार्यक्रम में वृक्षारोपण करें, ताकि पर्यावरण असंतुलन को कम किया जा सके।

0: सके।
1: सखियो अभी आप सुन रही थी वार्ता, विषय था पर्यावरण संरक्षण, वार्ताकार थी सुश्री रश्मि शर्मा। सखियो वास्तव में पौधारोपण एक अभियान नहीं बल्कि जीवन से जुड़ा एक संस्कार है। जब कोई माँ अपने आंगन में पौधा लगाती है, जब कोई बेटी उसकी देखभाल करती है और जब पूरा परिवार उसे वृक्ष बनते हुए देखता है, तब केवल एक पेड़ नहीं बढ़ता बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी संवेदनशीलता भी बढ़ती है। कहते हैं ना कि पेड़ धरती की मुस्कान है, इनसे ही जीवन की पहचान है। सखियो आज गांव की चौपाल हो, विद्यालय का मैदान हो, खेत की मेड़ हो या घर का छोटा सा आंगन, हर स्थान एक नए पौधे की प्रतीक्षा में है। बहनों, यदि हम अपने जीवन के खास अवसरों को पौधारोपण से जोड़ दें तो विशाल परिवर्तन संभव है। संतान के जन्म पर एक पौधा, जन्म दिवस पर एक पौधा, विवाह की वर्षगांठ पर एक पौधा, बच्चों की सफलता पर एक पौधा और अपने प्रियजनों की स्मृति में एक पौधा। सखियो तनिक विचार कीजिए, यदि प्रत्येक परिवार वर्ष में केवल 5 पौधे लगाए और उनकी देखभाल करें तो हमारा पूरा क्षेत्र कुछ ही समय में हरा भरा हो जाएगा। पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि हमें जीवन भी देते हैं। इन्हीं भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक और गीत।

सखियो, इस हरे भरे रास्ते से भरा हुआ गीत सुना और ये भी सच है सखियो, पेड़ अपनी जुबान से कुछ नहीं कहते हैं बल्कि अपनी छाया, अपने फल और अपनी सांसों से संपूर्ण प्राणियों पर परोपकार करते हैं। सखियो, इनके परोपकार को याद करते हुए अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अंत में बस यही कहेंगे कि विकास की दौड़ में पर्यावरण और प्रकृति से दूर ना हो, जल जंगल और जमीन को बचाएं, पर्यावरण का संरक्षण करके प्रकृति में संतुलन बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पेड़ लगेंगे तो धरती मुस्कुराएगी, धरती मुस्कुराएगी तो जीवन मुस्कुराएगा। सखियों, हम आशा ही नहीं करते हैं बल्कि हमें विश्वास है कि आप आज से ही पर्यावरण संरक्षण की सहभागी बनेंगी, और इसी विश्वास के साथ अनुमति दीजिए अपनी सखी पूर्णिमा को। नमस्कार।

0: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे समर्पण का प्रतिमा।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत के कार्यक्रम में शोभना कश्यप के गाए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की है। आरंभ में ये दादरा

इस गारी गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे शोभना कश्यप के गाए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कोकिला दत्ता के गाए कुछ भजन।

0: कबीर की इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे कोकिला दत्ता की गाए कुछ भजन, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
3: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
7: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
4: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
3: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
4: सफर में
3: आपके साथ
4: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न
2: चोरी चोरी किया,
1: न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में सूरज का लिखा यह गीत था। लता मंगेशकर, उदित नारायण ने गाया था। फिल्म थी सातवां आसमां। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन इंदौर पहुंचने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित जनजाति सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी व्यक्ति और समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए।
2: 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए।
1: राष्ट्रपति आज ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगी और शाम की आरती में भी शामिल होंगी। इस दौरे में 21 जून को जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 22 जून को कूनो नेशनल पार्क का दौरा भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के बाद कहा कि उनका प्रदेशागमन प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति प्रदेश के सफल चीता प्रोजेक्ट का अवलोकन करेंगी और सिकल सेल एनीमिया से निपटने की राज्य सरकार की रणनीति से भी अवगत होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैतूल में ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में राष्ट्रपति की भागीदारी से आध्यात्मिक और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार समझौते, रक्षा सहयोग और पश्चिम एशिया की स्थिति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता होने के बहुत करीब है और यदि भारत पर कोई हमला हुआ तो अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में प्रमुख फ्रांसीसी व्यापार जगत के

प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि पिछले साल अगस्त से इस योजना के अंतर्गत 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। पहली सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इस कार्यक्रम में 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम श्वास तक शत्रु के समक्ष शीश नहीं झुकाया और मातृभूमि के सम्मान के लिए उनका बलिदान भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। मुख्यमंत्री ने फ्लाइंग सिख और पद्मश्री प्राप्त मिल्खा सिंह को भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देशभर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान और विकसित भारत की पहचान है। इस अभियान के तहत जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड में जारी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। इस जीत के साथ भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। प्रदेश का खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए टैलेंट सर्च महाअभियान चला रहा है, जिसके तहत 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाएगा। इस अभियान में एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती, बॉक्सिंग और तीरंदाजी समेत कुल 21 खेल विधाओं के ट्रायल होंगे। ऑनलाइन पंजीयन 17 जून से शुरू हो रहा है और चयन प्रक्रिया 27 जून से आरंभ होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया नगर पालिका परिषद में जनकल्याण शिविर का आयोजन किया गया। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पत्रकारिता के अध्येता एवं इतिहास लेखक विजय दत्त श्रीधर को डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। गुना कलेक्टर ने स्कूल चले हम अभियान के दूसरे चरण के तहत पुरानी छावनी के PM श्री शासकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्रों से संवाद किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़

0: रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारे की सारी सुविधाएं अंडर वन रूप यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी।

0: प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर दो दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर हॉर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं आएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में

0: उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके पत्रों के माध्यम से भेजी पसंद हम पूरी करेंगे इस कार्यक्रम में। पहला पत्र शामिल कर रहे हैं हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफी इंदौर से हमें पत्र भेजते हैं। जय बजरंग, रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास बंडा बेलई जिला सागर से लक्ष्मण रैकवार, श्रीमती विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी, अनर्थ रैकवार, हल्ले लल्लू, ऋषि रैकवार, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय की। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमारी संचित वायाल, मैताला से प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, करडा रिसोर्ड से सानवी देशमुख और सर्वद्र देशमुख, डोंगर गांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनामिका अनिष्का और तन्मय गजबिये।

इसी गीत को सुनना चाहा है शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने। अमरपुर पंडरा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव ने। विश्वात्मा फिल्म का गीत साधना सरगम का गाया हुआ। आनंद बख्शी ने बोल लिखे हैं, विजू शाह ने संगीत।

कार्यक्रम में अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं कालीचरण यादव, दीपक यादव, चांदनी यादव और उर्मिला यादव की ग्राम संदलपुरा से। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार की। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉ अमनदीप की। कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुजतबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की। सुनना पसंद किया है सौदागर फिल्म का गीत, कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उदास और सुखविंदर ने इसे गाया है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेला।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं आशा रेडियो श्रोता संघ के मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर राही, सरिता गवहाणकर सिद्धांत, प्रिंस और एकांश गवहाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित ध्वनि गवहाणकर परी की, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले की, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा की, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर की, तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्यप्रदेश से

कार्यक्रम में अगली ख्वाहिश शामिल कर रहे हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी और सौरभ शर्मा की। शाइना और निवान भी इनके साथ हैं। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और सूरज कुमार ढाकसे की। रामचंद्र माखीजा काफिर, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति माखीजा, छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार छत्तीसगढ़ बनियापारा धमतरी से ये पत्र हमें भेजता है। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन, अरुण चौरसिया हमें ये पत्र भेजते हैं। और कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली की। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल और प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा की। दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गीत अनुराधा पोडवाल का गाया हुआ, समीर के बोल है, नदीम श्रवण ने धुन बनाई है।

0: दिल है कि मानता नहीं के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन इंदौर पहुंचने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इंदौर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के बाद कहा कि राष्ट्रपति प्रदेश के सफल चीता प्रोजेक्ट का अवलोकन करेंगी और सिकल सेल एनीमिया से निपटने की राज्य सरकार की नीति से भी अवगत होंगी। राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी द्वारा आयोजित जनजाति सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार समझौते, रक्षा सहयोग और पश्चिम एशिया की स्थिति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। प्रदेश में मानसून 22 से 24 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। प्रदेश में मानसून से पहले गर्मी का असर भी बढ़ता दिख रहा है और अगले 3 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं हॉकी में भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड में जारी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। श्रोताओं, शाम 6:30 पर आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आयोजित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट। युवाओं का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर होगा, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की होगी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। रात्रि 8:00 समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष के अंतर्गत आज सुनिएगा विरासत। आपकी फरमाइश कार्यक्रम रात्रि 10:00 आप सुनेंगे और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा SL कंडारा का वायलिन पर बजाया राग यामिनी। आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी का प्रसारण शाम 7:21 पर होगा। इसके अंतर्गत डॉक्टर अनामिका पंडे से ग्रामीण महिलाओं के विकास में अग्रसर शासकीय योजनाएं विषय पर की गई भेंटवार्ता प्रसारित करेंगे। ये थे मुख्य आकर्षण सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 3:01:33 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारा ये प्रसारण समाप्त होता है। शाम 5:00 हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः हाजिर होंगे। इस बीच हमारा प्रसारण DTH पर जारी है।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:02 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे शोभना कश्यप के गाए कुछ लोकगीत। आरंभ कर रहे हैं इस दादरा के साथ।

इस गारी के साथ ही लोक संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे शोभना कश्यप के गाए कुछ लोकगीत। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में कोकिला दत्ता के गाए कुछ भजन।

कबीर की इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे कोकिला दत्ता के गाए कुछ भजन। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

हम पिक्चर से लिया ये गीत है, मोहम्मद अजीज और शोभना जोशी ने गाया है। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित जनजाति सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि AI एक परिवर्तनकारी शक्ति है, लेकिन इसका उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना भी होना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। श्री प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और क्षमता के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान है। प्रदेश में मानसून के पहले गर्मी का असर भी बढ़ता दिख रहा है और अगले 3 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। और हॉकी में भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड में जारी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:02 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी। आज की युवाणी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: नमस्कार दोस्तों, आज के युववाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सनाया नायक
1: और मैं हूं मेघा राय।
0: दोस्तों, कहते हैं ना, जब इरादे मजबूत होते हैं तो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो जिंदगी में कभी उदास ना होना और कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना।
1: तो दोस्तों, आज की शुरुआत करेंगे हम दो प्रश्नों के साथ, जिनके उत्तर हम बताएंगे आपको कार्यक्रम के अंत में। तो हमारा पहला प्रश्न है, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया गया है?
0: और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, किसके द्वारा हाल ही में ध्रुव पहल लॉन्च की गई है? तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम का पहला गीत सुनने का, जो है फिल्म बॉर्डर 2 से, जिसे गाया है दिलजीत दोसांझ, सचित टंडन और परंपरा टंडन ने।

0: सनाया, क्या तुम भी मानती हो कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है? उनमें एक अलग एनर्जी होती है, उनके नए विचार होते हैं और बदलाव लाने का जुनून भी अलग ही होता है।
1: बिल्कुल सही कहा मेघा तुमने, पर मेरा मानना यह भी है कि हर युवा का व्यक्तित्व विकास अत्यंत आवश्यक है। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। ऐसे में युवाओं का होलिस्टिक डेवलपमेंट देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है।
0: दोस्तों, कुछ खास बातें इस बारे में ध्यान रखना, मानना, जानना भी जरूरी है, जैसे अपना आत्मविश्वास बढ़ाना, अच्छी संचार कला विकसित करना, नियमित पुस्तक पढ़ना, समय प्रबंध सीखना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करना है।
1: जब युवा अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं तो वे न केवल अपने करियर में सफल होते हैं बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनका ज्ञान, उनका थॉट प्रोसेस, उनका नजरिया, उनकी सोच और ऑफ कोर्स उनका पावर सभी मायने रखता है।
0: दोस्तों, हम सबके भीतर असीम संभावनाएं छिपी होती हैं। आवश्यकता केवल उन्हें पहचानने, सही दिशा देने और निरंतर निखारने की है।
1: तो विश्व के सबसे बड़े युवा देश के शक्तिशाली युवाओं को अपनी शक्तियों को जागृत करने और देश के विकास में सीधे जुड़ने की प्रेरणा खुद को खुद से लेनी होगी। और चलिए, इस प्रेरणा के लिए यह गीत बड़ा ही अप्रोप्रिएट बन पड़ता है। तुमेघा सुने और सुनाए ये गीत, जो लिया गया है फिल्म सूरमा से, जिसे आवाज दी है शंकर महादेवन ने।

0: कहते हैं कि कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं बनाती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय की सीमाओं को पार कर अमर हो जाते हैं।
1: बिल्कुल मेघा, और जब बात साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति की हो तो एक नाम पूरे गर्व के साथ हमारे सामने आता है। एक ऐसी वीरांगना जिसने न केवल किसी राज्य की रक्षा के लिए बल्कि पूरे देश को स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा दी।
0: आज के हमारे विषय प्रेरक व्यक्तित्व में हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था और एक युवा रानी ने अपने साहस से इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ दी थी।
1: वह रानी जिसने दुनिया को बता दिया कि हिम्मत का कोई लिंग नहीं होता और देश प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।
0: जी हाँ, आज की हमारी प्रेरणा है झांसी की शान, वीरता की पहचान और भारत की अमर नायिका रानी लक्ष्मीबाई।
1: तो आइए सुनते हैं उनके जीवन की प्रेरणादायक कहानी।
0: 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था, बचपन से ही बेहद साहसी और निडर थी। जहां उस समय लड़कियों को घर में काम सिखाए जाते थे, वहीं मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में रुचि रखती थी।
1: बचपन से ही उनमें नेतृत्व करने की क्षमता दिखाई देती थी। उनकी यही विशेषताएं आगे चलकर उन्हें इतिहास की सबसे महान वीरांगनाओं में शामिल करने वाली थी।
0: समय के साथ उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ और वे रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। झांसी की रानी बनने के बाद उन्होंने अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखा और जल्द ही लोगों के दिलों में विशेष स्थान बना लिया।
1: लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ समय बाद उनके पुत्र का निधन हो गया और फिर महाराजा गंगाधर राव भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यह रानी लक्ष्मीबाई के लिए बेहद कठिन समय था।
0: रानी ने एक बालक को गोद लेकर उसका नाम दामोदर राव रखा, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उसे उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेज झांसी को अपने अधिकार में लेना चाहते थे।
1: यहीं से शुरू हुआ वह संघर्ष जिसने रानी लक्ष्मीबाई को अमर बना दिया। अंग्रेजों के सामने झुकने के बजाय उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी।
0: 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। झांसी भी इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया।
1: रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को संगठित किया। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध प्रशिक्षण दिया और स्वयं सेवा का नेतृत्व किया। उनकी बहादुरी देखकर सैनिकों का उत्साह और कई गुना बढ़ गया।
0: जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, तब रानी ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। वे युद्ध भूमि में स्वयं उतर गईं और अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी।
1: कहा जाता है कि अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर वे घोड़े पर सवार हुई और युद्ध करती रहीं। यह दृश्य आज भी वीरता की सबसे बड़ी मिसालों में गिना जाता है।
0: हालांकि परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन रानी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने ग्वालियर तक संघर्ष जारी रखा और अंतिम समय तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ती रहीं।
1: 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। उनका साहस, उनका आत्मसम्मान और उनका देश प्रेम के लिए जो जज्बा था, आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है।

0: अभी आप सुन रहे थे यह गीत जो था फिल्म मणिकर्णिका से, जिसे गाया शंकर महादेवन ने।
1: दोस्तों, अक्सर हम बचपन से सुनते हैं कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन क्या यह सफलता का रास्ता सिर्फ नौकरी तक ही सीमित है?
0: बिल्कुल नहीं मेघा, आज का दौर अवसरों का दौर है। अब शिक्षा सिर्फ डिग्री पाने का माध्यम नहीं, बल्कि अपने सपनों को साकार करना और खुद के लिए रोजगार पैदा करने की ताकत भी बन चुकी है। एक ऐसा विषय जो युवाओं को सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की प्रेरणा देता है।
1: दोस्तों, शिक्षा का असली उद्देश्य केवल किताबों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग जीवन में करना भी है।
0: यदि किसी छात्र ने कंप्यूटर की पढ़ाई की है तो वह फ्रीलांसिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और कई काम भी शुरू कर सकता है। और अगर किसी ने फैशन डिजाइनिंग पढ़ा है तो वह अपना बुटीक भी ओपन कर सकता है।
1: यानी शिक्षा हमें केवल नौकरी के लिए तैयार नहीं करती, बल्कि हमें आत्मनिर्भर बनने की क्षमता भी देती है।
0: आज हम ऐसे कई युवाओं को देखते हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई को अपना व्यवसाय का आधार बनाया। किसी ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, किसी ने अपना स्टार्टअप बनाया, तो किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने हुनर को पहचान दी।
1: स्वरोजगार का सबसे बड़ा फायदा ये है कि व्यक्ति अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार काम कर सकता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और नई संभावनाओं के द्वार भी खुलते हैं।
0: हालांकि शुरुआत में चुनौतियां भी आती हैं। पूंजी की कमी, अनुभव की कमी या असफलता का डर कई लोगों को रोकता है।
1: लेकिन याद रखिए, हर बड़ा व्यवसाय कभी न कभी एक छोटे से विचार से शुरू हुआ था। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पहला कदम उठाने का साहस रखते हैं।
0: अगर हम अपनी शिक्षा के साथ कौशल विकास को जोड़ दें तो स्वरोजगार के अवसर और भी बढ़ जाते हैं। आज सरकार भी कई योजनाओं के माध्यम से युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
1: आज का युवा अगर अपनी शिक्षा, तकनीक और रचनात्मकता को एक साथ जोड़ ले तो वो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है,
0: और यही एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है।
1: तो दोस्तों, आज के विषय से हमें यही सीख मिलती है कि शिक्षा को केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन ना समझें,
0: और इसी नई शुरुआत, नए सपनों और आत्मनिर्भरता के जज्बे को सलाम करते हैं। आइए सुनते हैं एक प्रेरकदायक गीत फिल्म केदारनाथ से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने।

0: कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछे थे और उनका जवाब जानने का समय हो चला है। पहला सवाल था, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया है? सही जवाब है राजस्थान।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था, किसके द्वारा हाल ही में ध्रुव पहल लॉन्च की गई है? इसका उत्तर है भारतीय डाक विभाग।

0: इन्हीं विचारों के साथ आज के युवाणी कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त सनाया नायक,
1: और मैं हूँ मेघा राय।
2: स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी। आज की युववाणी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हुए हैं। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत गाना जिसको हमने लिया है आज और कल से। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है और रवि का संगीत है। फिल्म का नाम आज और कल।

0: दुनिया ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
1: अगला गाना लिया है हमने फिल्म आज आपकी कसम से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है। आर डी बर्मन का संगीत है। सुनिए ये गीत।

0: अब हम आपको सुनवा रहे हैं आखिरी खत फिल्म में मोहम्मद रफी को। कैफी आजमी ने इस गाने को लिखा है, खय्याम का संगीत है।
1: और कुछ देर ठहर

अब हम आपको सुनवा रहे हैं आखिर में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गीत, जिसको हमने लिया है फिल्म आप आए बहार आए से। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत, यह है कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

0: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हुए हैं और ये समय होता है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और समुद्री अवसंरचना जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित जनजातीय सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए। पश्चिमी एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। श्री प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और क्षमता के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देशभर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। और हॉकी में भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड में जारी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना, पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: और जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी, आपकी, सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते, जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहां से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया

0: और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओ, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओ, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्यौहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओ हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओ आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा

करते हैं। नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
1: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
0: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
1: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
2: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
1: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
2: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी।

0: तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
1: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
0: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
1: वो सोना क्या चीज होती है?
0: तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं, उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
1: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं। पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
0: ठहर ठहर ठहर। इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं। ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ।

0: पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
1: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना।
1: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
2: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
2: सेठ मुझे देर हो रही है।
0: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
2: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
3: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
4: जी मालिक।
1: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
0: हाथ से निकल गई।
1: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
2: माँ
1: ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
5: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
1: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही।
5: बड़ी
1: देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और लीजिए अब प्रस्तुत है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आयोजित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी बैतूल का योगदान है और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित किया जा रहा है।

0: श्रोताओं, आज बैतूल नगर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जिला प्रशासन और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयासों से आध्यात्मिक जागृति से आदिवासी समाज का सशक्तिकरण इस विषय पर महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके, जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल तथा विधायक बैतूल श्री हेमंत खंडेलवाल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की हेलीपैड पर अगवानी की। तत्पश्चात कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति का काफिला समारोह स्थल पर पहुंचा। आयोजन स्थल पर श्वेत भव्य वर्षारोधी मजबूत पंडाल लगाया गया था, जिसमें लगभग 4000 लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई थी। सभी के प्रवेश हेतु अलग अलग प्रवेश द्वार निर्धारित किए गए थे। सुरक्षा कर्मी सघन जाँच और एंट्री पास देखकर ही लोगों का प्रवेश सुनिश्चित कर रहे थे। मंच पर विशेष अतिथियों के बैठने की सुरुचिपूर्ण व्यवस्था की गई थी। यहां पहुंचकर महामहिम द्वारा कार्यक्रम स्थल पर वृक्षारोपण एवं ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ सदस्यों के साथ फोटो सत्र भी पूरा किया गया। कार्यक्रम में आध्यात्मिक जागृति के साथ साथ स्थानीय संस्कृति और विकास की झलक भी देखने को मिली। यहाँ बैतूल की अनूठी स्थानीय कला, हस्तशिल्प और जनजातीय विरासत को प्रदर्शित करती हुई विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। साथ ही वन विभाग द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण, वनोपज और जनजातीय समाज के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों को जीवंत रूप से दिखाया गया था। कार्यक्रम का आरंभ राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के गायन से हुआ। फिर मंच पर विधिवत दीप प्रज्वलन किया गया तथा मंच पर उपस्थित सदस्यों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी का शॉल और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। इसके बाद पीके मंजू दीदी, संचालक बैतूल मध्य प्रदेश, द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया।
1: आज हम सभी के लिए, विशेष बैतूल वासियों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, बहुत खुशियों का दिन है। मैं बताना चाहती हूँ, आज से 2 साल पहले मैंने एक छोटा सा सपना देखा था। सपना तो बहुत बड़ा था, दिल और दिमाग की जंग शुरू हो गई थी। दिमाग ने कहा था असंभव, लेकिन दिल ने कहा था संभव। और इतनी इन खुली आंखों से मैंने जो सपना देखा था, आज वो सपना हम सबके सामने साकार हो रहा है।
0: इसके बाद प्रस्तुत स्वागत नृत्य ने सभी का मन मोह लिया।

0: इस अवसर पर जोनल संचालक मध्य प्रदेश बी के शैलजा दीदी ने कहा,
1: आज हम सभी बहुत सुंदर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण। आदिवासी समाज सदैव से ही प्रकृति का रक्षक रहा है। आप में एकता और सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। आपकी जड़ी बूटियाँ जीवन दान देने वाली हैं। जड़ी में दवा और श्रद्धा में दुआ, ये कहावत भारतीय संस्कृति की आस्था और ईश्वर में विश्वास का परिचायक है। हमारे आदिवासी

0: भाई बहनों की ये परंपरा कि हर शुभ अवसर पर नीम, महुआ, पीपल, बरगद जैसे वृक्षों को रोपने की, इन्होंने ही जंगलों को जीवित रखा हुआ है। जलाशयों को प्रदूषण से मुक्त रखना और उनके गहरीकरण के प्रति जागरूक रहना, ये आपका दिव्य कर्तव्य रहा है। ऐसे आदिवासी समाज के जागृति क्या केवल भौतिक विकास द्वारा संभव है, या इसके लिए आध्यात्मिक जागृति आवश्यक है? आध्यात्मिकता हमें स्वयं के अर्थात इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा के मूल गुणों से परिचित कराती है। मूल गुणों में शक्ति है।
1: कार्यक्रम में उपस्थित माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री दुर्गादास विके ने अपने उद्बोधन में जनजातीय समुदाय हेतु सरकार द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की।
2: आज बैतूल की पुण्य धरा पर हम सभी एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बन रहे हैं। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं भाइयों बहनों, बल्कि आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक जागरण और जनजातीय अस्मिता के सम्मान का एक विराट महोत्सव है। सबसे पहले मैं अपने संसदीय क्षेत्र बैतूल की ओर से भारत की प्रथम जनजातीय महिला महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ओडिशा के एक छोटे से जनजाति गांव में जन्मी एक साधारण बालिका का भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की शक्ति, संविधान की महानता और सामाजिक समरसता की अद्भुत मिसाल है। महामहिम राष्ट्रपति जी, आपका जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा की अद्वितीय मिसाल है। आपने अपनी कर्मठता, धैर्य और सामाजिक उत्थान के प्रति अटूट संकल्प के बल पर न केवल उच्चतम संवैधानिक पद को सुशोभित किया है, बल्कि देश की हर बेटी, हर वंचित वर्ग और समाज के हर नागरिक के लिए आप प्रेरणा स्रोत है, आदर्श है। आपका जीवन यह दर्शाता है कि सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आज जब आप बैतूल की इस जनजाति बहुल भूमि पर पधारी हैं, तब यहाँ का प्रत्येक जनजाति परिवार स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। महोदया, आपकी अंतर्वेदना और देश की जनजातियों के प्रति अथाह संवेदनाओं के फलस्वरूप धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनमन आदि कर्मयोगी, संसदीय संकुल विकास परियोजना, सिकल सेल एनीमिया, टीबी जैसी अनुवांशिक बीमारियों के प्रति ठोस कार्य योजनाएं बन सकी हैं।
1: मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने अपने संबोधन में कहा,
3: राजयोग और मेडिटेशन से जो शांति मिलती है वो अब मैंने खुद ने अनुभव किया है। मैं समझता हूँ, यहाँ नीचे में सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी बहनें देखी, यहाँ भी बहुत से आदिवासी समाज के भाई बहन बैठे हैं। मैं सभी को आग्रह करूँगा कि जीवन में हमको शांति चाहिए, पहले पैसा की बात करो, मगर मन को शांति मिलेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। मन को शांति मिलेगी, धार्मिक भावना होगी तो हम नीति से चलेंगे और भगवान को भी वो पसंद है। इसलिए मैं समझता हूँ आदिवासी सशक्तिकरण में आध्यात्मिक का भी ध्यान होना चाहिए और ऐसी संस्था से जुड़कर हमको जो हमारे जीवन में प्रगति करना है वो अच्छी तरह कर सकेंगे।
1: राष्ट्रपति जी द्वारा कलश एवं ध्वज स्थापना द्वारा महासम्मेलन के शुभारंभ की घोषणा की गई।

0: आध्यात्मिक जागृति आदिवासी समाज के सशक्तिकरण का मूल आधार है। अपनी समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक जीवन शैली इन्हें अपनी अलग पहचान बनाने का एक अवसर देती है। इस बात को रेखांकित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा,
1: उपभोग की संस्कृति और संस्कृति पर आधारित

0: की तेज भागती दुनिया में समाज के हर वर्ग की आध्यात्मिक शुचिता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बल पर दीर्घकालीन रूप से समतापरक आचरण पद्धति और प्राकृतिक संपदाओं के प्रति संवेदनशीलता जीवन शैली विकसित की जा रही है। आज के तनाव और युद्धों से त्रस्त विश्व में इसकी आवश्यकता अतीत के किसी भी कालखंड की तुलना में और अधिक हो गई है। इसीलिए इस सम्मेलन तथा ऐसे प्रयासों का महत्व और भी बढ़ जाती है।
1: आध्यात्मिकता आदिवासियों की जीवन शैली में नैसर्गिक रूप से बसी है, इस बात पर बल देते हुए राष्ट्रपति महोदया ने कहा,
0: जनजातीय समुदाय की जीवन शैली सहज रूप से ही अध्यात्म की मूलभूत प्रेरणाओं के निकट होती है। हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी है, आदिम आदिवासी जो सृष्टि के आरंभ से ही ये धरा पे रहते हैं और उनके जीवन शैली ये केवल कोई वो आध्यात्मिकता ही भरा हुआ है और सुख शांति आनंद प्रेम में जीना जानते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। हम जानते हैं ये आदिम काल में जैसे थे आज भी ऐसे ही है, जैसे कि गीली मिट्टी उसको जैसे बनाओ ऐसे बनते हैं। वो प्रकृति के पूजा करते हैं, लेकिन केवल प्रकृति नहीं पंचतत्व को पूजा करते हैं। ये धरती, ये आकाश, वायु, जल, सूर्य, चंद्र, इसको पूजा करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन बनाने के, कोई मंदिर, कोई पूजाशाला बनाते नहीं।
1: राष्ट्रपति जी आगे कहते हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति को कोई क्षति नहीं पहुंचाते, यह उनकी सकारात्मक सोच को दर्शाता है।
0: धरती को क्षति पहुंचाते नहीं, जल कभी दूषित नहीं करते, तालाबों में नहाते, नदियों में नहाते, नदी में कोई कूड़ा फेंकता नहीं, तालाबों को कोई अपरिष्कार नहीं करते। धरती को जरूरत के मुताबिक कभी चोट पहुंचाते तो उसके पहले उसको नमन करते हैं, पेड़ पौधा पूजा करते हैं, वो सही है। आज तो गैस आ गया है, लेकिन एक दिन था पेड़ से ही हम खाना बनाते थे, लेकिन सूखे पेड़ को चुनते हैं। किसी भी कारण कोई पेड़ को चोट पहुंचाते कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो उसके पहले उनको नमन करते हैं, सूर्य को पूजा करते हैं। आप सोचिए सूर्य नहीं होता तो क्या होता, पेड़ पौधा नहीं होता तो ये जितने हवा परमपिता परमात्मा ने धरती पे दिए हैं वो खत्म हो जाता। आज पेड़ पौधा है इसीलिए वो रोटेट होता है। आज समुन्द्र नदी है इसीलिए बारिश हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए इसी दृष्टि से ये आध्यात्मिकता से आदिवासी समाज भरपूर है, कूट कूट का उनके मन में आध्यात्मिकता भरे हुए है। पेड़ पौधा में वो रहते हैं क्योंकि कभी कभी किसी आदिवासी उनको उनके वंशज, पेड़ पौधों के वंशज कहते हैं।
1: अपने उद्बोधन के अंत में बैतूल जिले और उनके निवासियों के स्वभावगत विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा,
0: मध्य प्रदेश का ये बैतूल जिला अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विरासत के लिए पूरे देश में जाना जाता है। मुझे बताया गया है कि यहाँ के जनजातीय समुदाय ने अपने विशिष्ट परंपराओं, लोक ज्ञान और सांस्कृतिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रखे हैं। बैतूल की जनजातीय संस्कृति में सामूहिकता, सहयोग, सरलता, ईमानदारी और आध्यात्मिकता जैसे उच्च जीवन मूल्य सहज रूप से विद्यमान है। जब आध्यात्मिक और सेवा का संगम होता है तब तो समाज में स्थायी परिवर्तन आता है। मुझे विश्वास है कि ये महासम्मेलन सेवा और आध्यात्म के इस संगम की ओर लोगों को आकृष्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए हम सब मिलकर 2047 तक एक ऐसे विकसित भारत का निर्माण करें और अधिक से अधिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें, जहां आध्यात्म, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और मानव

0: कल्याण हमारी समावेश की विकास की आधारशिला बने। मैं एक बार फिर इस आयोजन के लिए अपनी हार्दिक बधाई देती हूँ तथा सभी प्रतिभागियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: आज के कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगायन के सामूहिक गायन से संपन्न हुआ। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हेलीपैड पर गरिमामयी विदाई दी गई। अन्य अतिथिगण भी अपने अपने गंतव्य स्थलों की ओर चल पड़े। श्रोताओं, ये थी महामहिम राष्ट्रपति के एक दिवसीय बैतूल प्रवास की रेडियो रिपोर्ट। वाचक योगेश्वर, संकलन प्रवीण चौरे, तकनीकी सहयोग कांता प्रसाद टिकारे और अशोक सोनारे, और प्रस्तुतकर्ता सचिन भागवत।

अभी आप सुन रहे थे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आयोजित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी बैतूल का योगदान था और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित किया गया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आया सावन झूम के फिल्म का एक गीत। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म डॉन से, आवाजें हैं किशोर कुमार और साथियों की। अनजान ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

डॉन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है और हम आपको याद दिला दें कि 8:35 पर भी आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं। 7 बजे आप सुनते हैं हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। तो कृपया हिंदी में समाचार के लिए प्रतीक्षा करें, बस चंद सेकंड।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां पारंपरिक तरीके सीमित साबित होते हैं वहां नवाचार प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत में डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्रों में तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्धियों के माध्यम से मानव क्षमता की नई सीमाओं का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। श्री मोदी ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी कंक्लूडेड द हिस्टोरिक इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट विल एक्सपेंड अवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड इट विल ओपन अप मैनी पाथवेज फॉर द एक्सचेंज ऑफ टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म।
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: सेंटकोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रेडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। सरकार ने कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मीनाक्षी हुडा विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर चुकी हैं। मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। नीचे सुनिए कार्यक्रम विवरण। आज और कल के आकाशवाणी मध्य प्रदेश

0: और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:21 पर ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम होगा ग्राम लक्ष्मी। रात 8 हम आपको सुनवाएंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विरासत। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं 8:35 पर, 9:15 पर और रात 10 आप सुनेंगे आपकी फरमाइश। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे एस एल कंडारा का वायलिन पर बजाया राग यामिनी। ये थे आज के शेष मुख्य कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले। अब कल यानी शुक्रवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं जो आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होंगे। 11 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश, ये कार्यक्रम कल आप सुनेंगे दिन में 12, 2:30 पर और रात 10:30 पर। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनेंगे भुवन मोहिनी की पहली कड़ी। एक बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होंगे। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें 1 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं कल दोपहर 2, 5:33 पर, 6:30 पर, रात 8:35 पर और 9:45 पर। कल शाम 6 आप सुन सकते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 8 हम आपको सुनवाएंगे सेवा प्रभाग समाचार सेवा प्रभाग विशेष कार्यक्रम श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। कल रात 9:30 पर आप सुन सकते हैं खेल जगत, जिसमें आप सुनेंगे वार्ता फीफा वर्ल्ड कप में टीमों का प्रदर्शन, वार्ताकार हैं आलोक कुमार चतुर्वेदी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे सारंग फगरे का ख्याल गायन, राग होगा बागीश्री। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। और अब नजर डालते हैं कल सुबह प्रसारित होने वाले आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रम। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरमई सवेरा 8:30 पर, सुबह 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे गांधी चर्चा और 9:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत, 10 जिले की चिट्ठी और 10:05 पर फिर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। 10:15 पर कल आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर जिला खंडवा में आयोजित कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। और कल शाम 7:21 पर आप सुन सकते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा। ये थे आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
6: PLI है ना?
7: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैतूल में आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे में एआई, रेलवे और निर्माण क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों के सीईओ से की मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में शासकीय कन्या विद्यालय की खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। आईटी पार्क 3 का भी लिया जायजा। और 20 जून को पीएम किसान उत्सव दिवस। 9.5 करोड़ किसानों को मिलेगी सम्मान निधि की 23वीं किस्त। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन इंदौर पहुंचने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी द्वारा आयोजित आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए।
1: 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए।
0: राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए ओंकारेश्वर क्षेत्र को 19 जून तक नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है और विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे के दौरान आज कई शीर्ष वैश्विक कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। उन्होंने मिस्ट्रल एआई के सीईओ आर्थर मेंट्स से भारत के बढ़ते एआई इकोसिस्टम पर, एलस्टॉम के सीईओ मार्टिन सीएन से रेलवे आधुनिकीकरण पर और सेंट गोबेन के चेयरमैन बेनोइट बाजिन से निर्माण सामग्री क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। तीनों कंपनियों ने भारत में और अधिक निवेश तथा विस्तार की इच्छा जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल के एक लेख को साझा करते हुए कहा कि सरकार ने पेयजल, स्वच्छता, नदी संरक्षण, सिंचाई, भूजल पुनर्भरण और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग जैसी चुनौतियों का समाधान समग्र दृष्टिकोण से किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया के एक लेख को साझा करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की परिवर्तन गाथा देश के युवाओं की भी गाथा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर प्रवास के दौरान स्कूल चले हम अभियान के तहत बड़ा गणपति स्थित शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। उन्होंने विद्यालय में स्थापित अत्याधुनिक खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया, जहां छात्राओं ने दूरबीन, रॉकेट मॉडल और नक्षत्र ट्रैकिंग प्रणाली के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इंदौर में निर्माणाधीन आईटी पार्क 3 का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रदेश को देश का अग्रणी आईटी और सेवा क्षेत्र का केंद्र बनाना उनकी सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में आयोजित एक प्रेसवार्ता में बताया कि 20 जून को देशभर में पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे।
2: 20 जून पीएम किसान उत्सव दिवस, इस दिन 3:45 पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से 4,28,000 करोड़ रुपए, लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में अंतरित किए गए हैं और अभी 20 तारीख को फिर 18,800 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ हमारे देश भर के किसानों के खाते में ये निधि अंतरित करके दिया जाएगा।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।

0: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश के सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,47,00,000 LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में नक्सलवाद उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर एक रिपोर्ट।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
1: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से EPFO के 7 करोड़ से अधिक अंशधारकों को लाभ मिलेगा और इस महीने के अंत तक खातों में ब्याज राशि जमा होने की संभावना है। प्रदेश का खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए टैलेंट सर्च महाअभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत 8 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीयन 17 जून से शुरू हो चुका है और चयन प्रक्रिया 27 जून से आरंभ होगी। इस अभियान में एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती, बॉक्सिंग और तीरंदाजी समेत कुल 21 खेल विधाओं के ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। ICC महिला T20 विश्व कप में आज इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला होगा, जो भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल ग्रुप ए के मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए, जिसके जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 114 रन ही बना पाई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी ITI में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी विभाग के DSD पोर्टल पर 30 जून तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। सीहोर के बिल्किसगंज सांदीपनी विद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत पर विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें वितरित की गईं। अशोकनगर जनपद पंचायत ईसागढ़ में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। गुना में पॉली हाउस एवं गुलाब की उन्नत खेती पर विशेष प्रशिक्षण कल आयोजित किया जाएगा। शाजापुर जिले के राजीव गांधी महाविद्यालय काला पीपल के सभागृह में आज सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जबलपुर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के द्वारा आज राज्य स्तरीय पूर्व सैनिक रैली का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को नूतन खेल परिसर स्टेडियम मंदसौर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। धार जिले के बदनावर में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर का समापन हुआ और नीमच डाक संभाग के द्वारा 20 जून को डाकघरों में आधार एनरोलमेंट और अपडेशन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैतूल में आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे में AI, रेलवे और निर्माण क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों के CEO से की मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में शासकीय कन्या विद्यालय की खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। IT Park 3 का भी लिया जायजा और 20 जून को PM किसान उत्सव दिवस। 9.5 करोड़ किसानों को मिलेगी सम्मान निधि की 23वीं किस्त। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मिडिलवेयर डीटीएच ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण और लीजिए अब प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

चौपाल कार्यक्रम केर समय हमार सुनैया हितुवन काही लखन भाई के जथा जोग राम राम। सुनैया इत्ते जून मने यहाँ फथापत जल्दी जल्दी अपने तैयारी माही लगा है। तमाम मेयर से ही उन व्यवस्था हई कि पानी दंगरा के पहले पहले जौन बाहर है ओका भीतर या लेन जाए, चाहे कंडा ऊपरी हो चाहे और अपन भूसा पैरा जौन धरा है पशुअन के जौन व्यवस्था है छानी छप्पर जौन टूट फूट गए हैं उनका सब तमाम मने तैयारी में लगा है। देखी साथ है अब मने बेहन डर के अब समय हो गया और ओके निता निकहा बीज खाद गोबर के खाद ये सब तमाम व्यवस्था में हम नई इतनी जून बितुआन है। सुनैयो देखी जो पहले से चेत लेत है वह हमेशा सफल और फायदे में ही रहा है। आज वो अखबार पढ़ रहे हैं तो पढ़त पढ़त हमका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो महान वीरंगना लक्ष्मीबाई के बारे में ही बहुत बढ़िया लिखा रहा। उनकर स्वाभिमान और उनकर सम्मान कि माने चारों कई ताता ताई शक्ति लगी रही उनकर ठीहा टोरे माही तमाम मेयर से षड्यंत्र रचे जात रहे ओके बावजूद मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी ऐसन कहे वाली हिम्मती महिला रानी लक्ष्मीबाई रही। रानी लक्ष्मीबाई के संकल्प ऐसा रहा क्यों अंतिम सांस तक लड़ी तबय कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान लिखिन कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के किस्सा कहानी मने किताबन में खूब पढ़े है। उनका जो जमने का वह समय ऐसा रहा कि अंग्रेज विदेशी हुकूमत या सोचिस कि होएगा अब या मेहरिया जनी का करी एक किला काहीं एक हुकूमत काहीं हथियार लीन जाए और राज कीन जाए और मेर मेर के नियम संधि कानून बंचे बनावत रहे हैं जे जैसन टूटे जे जैसन बिखरे उका ओसन मेर से उनकर ऐसन प्रयास रहवा करत रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान जे पूरी कविता का इतने वृत्तांत से और इतने साधारण शब्दों में लिखीं कि मनाई वो कविता पढ़ लेते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई के पूर्व कहानी को मनाई समझ लेते हैं। अपना केर जन्म 19 नवंबर 1828 का बनारस में एक मराठी परिवार में भरा वहीं लड़कियों से ही मेधावी रही और कई

शिक्षा में ही दक्ष रही। लड़काई के नाम उनकर मणिकर्णिका रहा। पर सबय उनका मनु मनु कह के बुलावत रहे, मनु मनु से उनकर नाम जाना जात रहा है। मनु बचपन से तलवार भांजब घुड़सवारी करब सीखे रही और बढ़िया से युद्ध कौशल के शिक्षा लय रही हैं। उनकर ब्याह 1842 में ही झांसी के राजा गंगाधर राव से भा। विवाह के बाद उनकर नाम लक्ष्मीबाई परा, वो झांसी के रानी बनी। उसके बाद तमाम परिस्थिति हर कोहू के साथ ऊपर नीचे होत रहती हैं। उन तमाम विपत्ति में ऐसा भा कि रानी लक्ष्मीबाई के एक पुत्र जन्म लीस, लेकिन परिस्थिति बस कुछ महीना में ही वो गंभीर रूप से बीमार भें। 4 महीने की आयु में उनकर मृत्यु हो गए। झांसी जो है शोक के सागर में डूब गए। और साथ है 1853 में ही राजा गंगाधर राव के स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। और यह बताइन कि भाई अवांगे वंश में चलावे वाला को नहीं आए, ऐसे अपना का कोनों को का गोद ले चाहिए। ऐसा तमाम हुआ के जो उनकर दरबारी रहें, जो उनकर मंत्री रहें, यह उनका सलाह दिनहीन। अपने परिवार के 5 साल के एक लड़का का ही गोद लीन, दत्तक पुत्र बनाइन। यह बालक के नाम रहा दामोदर राव रखिन। लड़का के गोद लिए के बाद गंगाधर राव के दूसरे दिन 21 नवंबर 1853 में ही निधन हो गया। रानी अत्यंत दयालु स्वभाव के रहीं। एक दिन जब कुलदेवी महालक्ष्मी की पूजा कई के लुटत रहीं तो कुछ ऐसा गरीब निर्धन लोग उनका घेर लीन। उन्हीं देख के महारानी के हृदय द्रवित हो गया। वही नगर में घोषणा करवाए दीन कि एक निश्चित दिन का जो हम अपने क्षेत्र में ही गरीब हाँ उनका वस्त्र और तमाम मेर से वितरण करावा चाहिए। तमाम ऐसे दिन चलत रहे हैं। एक बात का भा कि वह समय माने अंग्रेजी हुकूमत रहा, उ तैसन तमाम देखत तो न तो तमाम ऐसे ताड़े नहार रहे, कुछ ऐसा परिस्थिति मिलें। और यह भाकी हम झांसी में ही आक्रमण करब। जब उनका एक नियम रहा है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत के हिसाब से उनका दत्तक पुत्र दामोदर राव का उत्तराधिकारी माने से मना कर दी थी। कहीं कि या हमार पाचन के जो नियम है, जो संधि है, उसके तहत यह हम एक आम नहीं मानी, तो अब जो झांसी है वो हमारे हवाले कह दी जाए। पर रानी लक्ष्मीबाई कहाँ माने वाली, ऊँ कहीं ऐसा है कि अब तक हम जिंदा हैं तो अपन झांसी हम न देब। और होगा 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम के ऐलान होगा, रानी लक्ष्मीबाई या युद्ध में ही एकदम बिजली किनाई भयानी शंकर और ना का कहावत है पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ जुड़ गई, लग गई और अंग्रेजन के खिलाफ तमाम मेर से अपन मोर्चा खोल दी थी। रानी लक्ष्मीबाई अपने क्षेत्र में ही तोपखाना के निर्माण कराईं और साथ है जौन महिला रहीं अपने क्षेत्र के, वो महिलान के चयन गई कि उन्हों का ही युद्ध कौशल के खातिर पारंगत करी। वो अंतिम सांस तक अपन किला के रक्षा करे के जो उनका प्रण रहा, तो लगातार उनके ऊपर आक्रमण होत रहे, ऐसे पै हार नहीं मानी। और 1858 में ही जब ब्रिटिश सरकार उनके ऊपर आक्रमण कर दी, तो रानी अपने साथ किला के रक्षा के नहीं अंग्रेजन के विशाल सेना का झांसी से भाग एक पर। एक बाद रानी ग्वालियर किला पहुंची और तात्या टोपे के साथ ग्वालियर किला का अपने हाथे में की नहीं। पर आज के रोज सन 1858 का ही ग्वालियर के लगे कोटा जन क्षेत्र हैं, वहाँ रानी अंग्रेजन से लड़त वीर गति कपाइन। देखिए वह कम उम्र

माने उनकर उम्र 29 साल की रही और ऐसा विपरीत परिस्थिति में ही रानी हार नहीं मानी और अपने जीते जी माने अंग्रेजन का नहीं सौंपिन ऐसा वीरांगना के आज शहादत दिवस आए हम पाँचे उनका नमन करी थे।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
4: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
6: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
7: बेटा अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
8: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
7: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधान

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
1: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सुनैयो कविता कहानी किस्सा हमका पाचन का ही बहुत मेर से सीख देती हैं, और सीख के साथ साथ मने आनंदो आवत है। और जानित हैं कि कविता माही कई एक मेर के रस होत हैं, चाहे वो सिंगार केर बाती हो, चाहे हास्य रस केर चर्चा हो, चाहे माने वियोग केर चर्चा हो, करुण रस के माने कई एक मेर के भाव हमका पाचन का कविता माही सुनने का मिलत है। और कविता चूँकि साहित्य के एक प्रमुख विधा आए, और तमाम जो बात ही मनई बड़े शब्दन माही बड़ी लंबा चौड़ा लिख पढ़ के मैंने कहा था है, वो कविता छोटे छोटे ऐसा चौगुलबन से ही बात बन जाती, लोगन का ही समझ में आ जाती। तो आज आई मनई मुकेश तिवारी जिसे मनई बघेली कविता सुने।
3: पहल कविता के शीर्षक है पर्यावरण। हाथ अपने न सब कुछ मिटावा, हाँ

हाथ अपने न सब कुछ मिटावा, चला पेड़ पौधा लगावा, जाग

अजुए संकल्प या उठावा, चला पेड़ पौधा लगावा। अजुए संकल्प या उठावा, चला पेड़ पौधा लगावा। जा

0: अपने न सब कुछ मिटावा, चला पेड़ पौधा लगावा। हमारे दूसरे कविता के शीर्षक है अपने ताकत का पहचाना। छोड़ा सगली वाय डंडी का अब ले बात बनाए, छोड़ा सगली वाय डंडी का अब ले बात बनाए, आलस दूर भगाई के पोथी ले उठाए, आलस दूर भगाई के पोथी ले उठाए, बड़े बड़े ज्ञानी जनन के यह सिखामन आए, बड़े बड़े ज्ञानी जनन के यह सिखामन आए, शिक्षा के उजियार से अधियारा मिट जाए, शिक्षा के उजियार से अधियारा मिट जाए, बड़े बिहन्ने जाग के करा सबक सब याद, बड़े बिहन्ने जाग के करा सबक सब याद, उधम मस्ती सैर सपाटा सब है ओखे बाद, उधम मस्ती सैर सपाटा सब है ओखे बाद, आज के मेहनत काल के बन जई है बरदान, आज की मेहनत काल के बन जई है बरदान, घर परिवार समाज माँ मिली मान सम्मान, घर परिवार समाज माँ मिली मान सम्मान, पढ़ लिख के तुम जान ले आपन सब अधिकार, पढ़ लिख के तुम जान ले आपन सब अधिकार, जौन सपन पुरिखा दिखिन करा उन्हीं साकार, जौन सपन पुरिखा दिहिन करा उन्हीं साकार, तुहरे खातिर खटत हैं घर के सबय सयान, तुहरे खातिर खटत हैं घर के सबय सयान, तुहरे ऊपर है टिके उनकर सब अरमान, तुहरे ऊपर है टिके उनकर सब अरमान, तुम भविष्य हो देश के, तुम भविष्य हो देश के बढ़वा एक हर मान, आगे आवा जाग जा खुद का ले पहचान, आगे आवा जाग जा खुद का ले पहचान।
1: सुनैया अभय हम पंच बहु सुंदर या कविता पाठ सुनत रहे हैं मुकेश तिवारी से, जमा पर्यावरण के बाति भय, आत्मविश्वास के बाति भय, तमाम बिरबा प्रदूषण नियंत्रण के चर्चा भय कि कौन मेर से हुतबिता धीरे धीरे हो रही हैं, अगर हम पंच समय रहात बिरबा पेड़ पौधा और इनमें से हवा पानी माटी का अगर ना बचाओ, तमाम प्रदूषण के जो राक्षस है वो मुँह फारे है और यहीं से तमाम मरज और मेर मेर के बीमारी हो रही हैं। तो निश्चित रूप से ये कविता पाठ हम मुझे बड़े आनंद के साथ सुनन।

सुनैया वावे हम पंच कोमल मिश्रा के गाई या गारी सुनत रहन हैं। सुनैया देश के उन्नति प्रगति या बात पे मैंने मजबूत नींव रखा थी कि कौन मेर से काम हो रहे हैं, कौन मेर से विकास के काम जमीन स्तर तक पहुंच रहे हैं। भारत सरकार के 12 साल पूर हो रहे हैं और जिमा कई ऐसा योजनाएं आई जो उनके सीधे तौर पर जमीनी बदलाव में आपन बड़ा मादा रखती हैं। जैसे जनधन योजना हो गए, तमाम बहुत सारे ऐसे लोग रहे गामन माही या तमाम दूर इलाकन माही जिनका खाता नहीं रहते रहें, उन्हों के खाता खोल के और जो उन सरकार के तरफ से या जो उन वित्तीय व्यवस्था है वो माँ बड़ा निकाह काम भा। ऐसे उज्ज्वला

0: योजना, उज्ज्वला योजना माने जौन गरीब बहनी हरे रही हैं, जो कंडा लकड़ी सुलगावत सुलगावत जिनकर माने शरीर माही कैक मेर के गंभीर बेरामी के शिकार हो जात रही हैं, उनका मदद पहुँचावे के निता सिलेंडर केयर व्यवस्था ऐसा उज्ज्वला योजना के माध्यम से कीन गए। आयुष्मान भारत योजना माने जौन चिकित्सा व्यवस्था माने कहाँ अपना कोनो बड़ी हॉस्पिटल में करा सकी थे और निर्धारित कुछ ऐसा बेरामी है इनका इलाज जौन है वो आयुष्मान योजना के तहत। स्वच्छ भारत योजना माने स्वच्छता के संदेश दे के नीता जल जीवन मिशन, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, पीएम आवास योजना, डिजिटल इंडिया, पीएम किसान सम्मान निधि, मेक इन इंडिया, पीएम स्वनिधि योजना ऐसा तमाम जो आमूल चूल परिवर्तन करे के नीता और सीधे एक सामान्य व्यक्ति तक उकर लाभ पहुँचे, लाभ के साथ साथ उके जीवन में ही या उके जो दिनचर्या है उनमें परिवर्तन हुए ऐसा तमाम व्यवस्था बनाई गई। जल जीवन मिशन माने हर को हुक पानी मिले, पानी की उपलब्धता चूँकि बहुत सारे ऐसा गामन की स्थिति है कि पानी के व्यवस्था हुआ नहीं है तो हुआ बाहर से नल जल योजना के माध्यम से ऐसा व्यवस्था बनाई जा सके जैसे कि उनका शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। और स्टार्टअप इंडिया माने जो अपन युवा हैं उनके छोट मोट जो उनका रोजगार का बढ़ावे के स्टार्ट करे के नीता ऐसा वित्तीय सहायता सरकार के तरफ से कि वह अपन काम कहीं आगे बढ़ा सकें, काम का शुरू कर सकें, शुरू करे के साथ साथ उनका आमदनी माही एमएर से चार चांद लागे। साथ है पीएम आवास योजना माने यह योजना के माध्यम से गामन में ही गामन या शहरीकरण में जो व्यक्ति माने एक निश्चित उमा व्यवस्था है कि ऐसे व्यक्ति की जिनके पास मकान नहीं आए, कच्चा मकान टूटा फूटा मकान हो, उनका मकान के एक पक्की छत के व्यवस्था बनावे में देखिए का होता है कि गर्मी ठंडी बरसात सबे के नीता एक निकही छत हो बहुत जरूरी है और नहीं तो कितने मेर से कितने लोग परेशान होते रहे हैं। ऐसा व्यवस्था पीएम आवास योजना के तहत बनाई गई। डिजिटल इंडिया आज हम पे जौन मैंने घरे बैठे भुगतान कई दी थे और न बैंक के भगदड़ होती आए, हर मेर के जौन पहले मनाई तमाम ऑनलाइन के काम के नेता तमाम बाहर जात रहा है, बागत परेशान होत रहा है, वो घर बैठे हम पंचे ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान कर सकी थे और तमाम जो लाइन के झंझट रही, भीड़ के झंझट रही है वह और ख़त्म है। जो पैसा के रेकाय मैंने मनई का भटके परत रहा है वो का बड़े सावधानी से सरल तरीके से तह में से अपन जो विरासत मैंने सरकार के जो 12 साल के जो निशन व्यवस्था है वह आम आदमी के नेता कहो न कहो कारगर साबित हो रही है और उनका लाभ जो है वह सीधे तौर पर आम व्यक्ति का मिल रहा है। ऐसे योजना से ग्रामीण विकास में निश्चित रूप से एक बड़ी अच्छी पहल हो रही है। सुनैया आज के कार्यक्रम अपना पाचन का कैसा लागे कजन भाई, हमारे कार्यक्रम के पता में अपना पाचन जरूर देव और हो लागे चले के जूना।
1: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: लागे चले के अर्जुना तदेय आज्ञा चौपाल कार्यक्रम के सब सुनैयन का हमार लखन भाई के जथा जो राम राम, जय जवान, जय किसान।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
2: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, एसएआरडीपी नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं, उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में पीएम डिवाइन, तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
2: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से

0: 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएमडीवाई को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत में पीएमडीवाई योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को, जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
0: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। मालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहां मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काईवॉक वहां पे तैयार हो रहा है, पर जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहां पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में, सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है। जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वैरायटीज हैं, चाहे वो लैकडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है, इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत

0: पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बनेगा। इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में और सरकारी से कैसे देख रही है?
1: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएं और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
0: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
1: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इंप्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इंप्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पर लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
0: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
1: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
0: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
1: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में, माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आइए। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर, स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में, तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सबका इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट, सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड व्हेन दे डू दैट दे ऑल्सो रिटेन देयर यूनिक आइडेंटिटी।
0: थैंक यू सो मच सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन दिस स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद आर मुकुंदन, प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। इंटरव्यूअर इज शिशिर सिन्हा, जर्नलिस्ट।
4: नमस्कार। मोदी गवर्नमेंट इज कंप्लीटिंग 12 इयर्स। ड्यूरिंग दोज 12 इयर्स वी हैव सीन वेरियस अप्स एंड डाउन इन द इंडियन इकॉनमी। We have seen challenges like COVID, we have seen challenges like Russia-Ukraine war, and now the current West Asia crisis. Despite all those things, Indian economy has grown more than 7% during those 12 years. And now the expectation is it will grow at much faster rate. So what kind of role India Inc. has to play in this entire growth journey? To talk about all those things, we have with us Mr. R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry. Mr. Mukundan, thank you very much for joining us from Morocco, and it's a pleasure to have you on the show.
5: Thank you very much.
4: Mr. Mukundan, my first question to you, how do you assess the Indian economy of last 12 years?
5: So I think a lot of positives happened, and if I were to say what are the way I would put sort of contextualize what has happened, you've already given the environment. There were challenges like COVID. External environment is very volatile. There's a challenge of AI coming in. What I think we have achieved is to have a more frictionless economy. There is less friction. And I'll explain what I mean by that. The whole digital payment, Jan Dhan, Jam Trinity, if you really look at it, it has reduced the friction in the economy. Also, the GST, for example, it's a landmark reform. It has ensured that, again, the friction in transaction of goods. If you recall, in the past, trucks would be waiting at state borders for hours. Today, actually, you can reach any part of India and has reduced logistic costs. I think the first F which they have achieved is to get to more frictionless economy. Second, I think what India has done is to use force multiplier, multiple force multiplier. And I'll give you examples. One is, for example, if you look at the way we have handled the PLI scheme, the defense exports, for example, 33 times from what it was at the beginning. So it's not a small feat to start from where we are and we are 33 times. People don't talk about it. And from a net importer, I think we are also now a good exporter of the defense equipment. Mobile phone, for example, has grown 6 times mobile assembly. Again, of course, aided by PLI scheme. But these schemes were important. They were thought of at various times. And various other elements of reforms were carried through, in my view. For example, the labor codes, the issue related to Bharat Mala Pariyojana, the Sagar Mala Pariyojana for logistics, PM Mudra Yojana, all these were fact parts of what I would call force multiplier. Add to that what Udaan scheme did for air transport, add to that what Smart City Mission has done to over 7,500 projects have been implemented with an outlay of 1.5 lakh crore. So all these adds up to what I would call the second part of the story, which is force multiplier. The third, I would call, is a factor social stability. I think while we do all this, if social stability is not there, it is not going to be good for any economy. I think, for example, several elements, PM Kisan Yojana, where almost 4 lakh or 4.1 lakh crore were transferred directly to farmer benefit. PM Awas Yojana, which is fundamentally over 4 crore houses have been sanctioned or constructed. And look at railway, for example, for the common man, Vande Bharat, 164 Vande Bharat services operationalized already, and more coming in the way. And when I say social stability, it also has some business elements to it. For example, insolvency and bankruptcy code actually augurs well because it brings unproductive assets into production.

अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विरासत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

0: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: एआई मस्ट इम्प्रूव लाइफ, वाइडन एक्सेस, ड्राइव ग्रोथ एंड ऑल्सो हेल्प अस सस्टेन अ हेल्दी प्लेनेट। Our participation at the AI Country Partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर We concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology, and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य

0: एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने

0: शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparation for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. 4 Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. प्राइम मिनिस्टर

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय

0: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं. रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है. एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है. पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं. 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है.
1: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी रास्तों की वजारत में डायरेक्टर उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि माल्टा के झंडे वाला एलएनजी जहाज दिशा, जिस पर 62,370 मैट्रिक टन एलएनजी है, कल सुबह गुजरात के दहेज बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा. ये जहाज पीर को आबनाए हुरमुस से निकला था. मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक बड़े नए जाब्ते को मंजूरी दी है, जिसके तहत सोशल मीडिया के लिए कम से कम उम्र 15 बरस तय की गई है. इस बड़े कदम का मकसद डिजिटल स्पेस में बच्चों के तहफ्फुज को मुस्तहकम करना है. शेख मोहम्मद बिन राशिदुल मख्तूम की सदारत में मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना ने यह फैसला किया. इस करारदाद के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और चलाने की इजाजत नहीं होगी और न उन्हें इंटरेक्टिव फीचर्स से, जैसे किसी मवाद को पोस्ट करने, उस पर कमेंट करने या उसे शेयर करने या पब्लिक ग्रुपों को ज्वाइन करने तक रसाई हासिल होगी. 15 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों को महदूद रसाई हासिल होगी, लेकिन वो सख्त निगरानी में ही रसाई हासिल कर पाएंगे. प्लेटफॉर्म्स को इन जाब्तों पर पूरी तरह से अमल करने के लिए 12 महीने का वक्त दिया गया है. चीन के गियांग में जारी आलमी मुक्केबाजी कप 2026 में आज भारत की मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई. मीनाक्षी ने खवातीन के 51 किलोग्राम जुमरे के 16 प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में पोलैंड की नटालिया को 5-0 से शानदार जीत हासिल की. 51 किलोग्राम के खवातीन के जुमरे में मीनाक्षी का मुकाबला कजाकिस्तान के अलाउ बाल्की बेकोवा से, जबकि 65 किलोग्राम जुमरे में स्नेह का मुकाबला पोलैंड की किंग करोका से होगा. क्वार्टर फाइनल में 57 किलोग्राम जुमरे में प्राची का मुकाबला चीनी ताइपे की चेंग यू यांग से होगा. 55 किलोग्राम के मर्दों के जुमरे में निखिल का मुकाबला आजरबाईजान के अमीन मोहम्मद ज़ादा से होगा. खवातीन मुकाबलों में 48 किलोग्राम जुमरे में ज्योति और 85 किलोग्राम में जुगनू ने पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाकर भारत के लिए तमगे को यकीनी बना लिया है. आखिर में खास खबरें एक बार फिर. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो. उन्होंने पेरिस में वीवा टेक समिट में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को उजागर किया. वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस के बड़े कारोबारी लीडरों के साथ भारत में सरमायाकारी के मौके और तौसी के मंसूबों पर तबादले ख्याल भी किया. वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के इतवार को होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की. ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान 9 दस्तखत शुदा मफाहमत नामों को एक तारीखी दस्तावेज करार दिया. इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना जिसको हमने लिया है फिल्म नसीब से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और साथियों की, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म एक दूजे के लिए। इस फिल्म से आवाजें हैं लता मंगेशकर, एसपी बाल सुब्रमण्यम और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म शान से, आवाज मोहम्मद रफी की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है, सुनिए ये गीत।

अमर अपर एंथोनी, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ें इस गाने में हैं किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, शैलेंद्र सिंह, आनंद बख्शी का गीत है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म श्री 420 से, आवाजें हैं लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफी और साथियों की। शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत है। सुनिए ये गीत।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने को हैं और आज 10 बजे आप सुनेंगे, जी हां, आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का सबसे पहले गीत हम लेकर हाजिर हैं, जिसको हमने लिया है, कौन सी फिल्म से लिया है। सबसे पहले तो हम उस फिल्म का नाम आपको बता दें। फिल्म का नाम है आशा और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में जो फरमाइश आई है वो है घंटा घर चूक खंडवा से। लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, मुनमुन, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने इस गाने को पसंद किया है। और इसी गाने के लिए हमारे पास में खत आया है, लिखने वाले हैं गौरी नगर इंदौर से। और खत जिन्होंने भेजा है उनके नाम है आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं कोटा राजस्थान से नवेद खान, जावेद खान, आशीष, हैप्पी और उनके बहुत सारे दोस्त। सुनते हैं ये गाना।

जब जब फूल खिले, ये फिल्म का नाम है। आवाज इसमें जिस गाने के लिए हमने ली है वो आवाज है मोहम्मद रफी की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से, लिखने वाले हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा और उनके साथी। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है गौतम नगर जिला नांदेड़ से, प्रभाकर जौंदले, आरती जौंदले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और ये खत आया है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, शालिया शोएब, मुश्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद। और गांधी बाग अकोला से लिखने वाले हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म सरगम से, आवाजें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कोटवा नारायण बावापट्टी पलिया से। लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रेश रोशनी राय, प्रांजल राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है आदर्श नगर मालोट पंजाब से। लिखने वाले हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगी राही और मेरा जहां। इन्होंने ये खत लिखा है आजाद नगर लश्कर हरिद्वार से। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफ़ी के माफ़ कीजिए, मोहम्मद अज़ीज़ और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में हमने अगला गाना लिया है, और इस फिल्म का नाम है दूत का कर्ज। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, और इस वाले गाने में जो हम आपको सुनवा रहे हैं इसमें अनु मलिक का संगीत है, और इस गाने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं आरिफ खान, अदीब खान, द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, इन्होंने ये पत्र लिखा है भाटापारा दतरंगी से, और महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर।

रोहिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर, इन्होंने ये गाने को पसंद किया है। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई है सपना संगीता रोड इंदौर से, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी और मनन तानिया ने इस गाने के लिए फरमाइश भेजी है। सुनिए ये गीत।

मुगले आजम इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और साथियों की हैं। शकील बदायूनी ने इस गाने को लिखा है, नौशाद का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है आदर्श नगर मलोट पंजाब से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मनिकपुरी, दतरंगी से भागवत वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और ये ख़त आया है सागर से, लिखने वाले हैं अमित कुमार जैन, निशा जैन, और ये पत्र साफ नहीं लिखा गया है और मेरा ख्याल है अदिति जैन, इन्होंने ये पत्र भेजा है और सुनते हैं ये गाना।

और आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में एक गाना जिसको हमने लिया है पेंगेस्ट से। मजरू का लिखा हुआ गाना है और एसडी बर्मन का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी के अंतर्गत SL कंडारा का वायलिन पर बजाया राग यामिनी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत एस एल कंडारा का गाया वायलिन वादन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने

बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।